सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम बैंड पर 909 किलोहर्ट्स, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक

वर्ष 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026 ईस्वी, सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा

0: बांटेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers,

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, आकाश में फैलती अरुणिमा, पक्षियों का मधुर कलरव और प्रकृति का शांत संगीत मानो हमें यह संदेश देता है कि हर नया प्रभात केवल एक नया दिन नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का एक नया अवसर भी है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है श्रोताओं, धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो, जो मनुष्य को सत्य, करुणा, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और सद्भाव की ओर ले जाए। और सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाते, जो अपने भीतर के अहंकार को छोटा और प्रेम को बड़ा करते। और हमारा भारत विविध आस्थाओं का देश है, यहाँ अनेक उपासना पद्धतियाँ हैं, पर लक्ष्य एक ही है, मानवता का कल्याण। और यही हमारी संस्कृति का सौंदर्य है और यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की आत्मा भी है। जहाँ प्रत्येक श्रद्धा का सम्मान है और प्रत्येक हृदय में ईश्वर के लिए स्थान है, तो आइए इस मंगलमय प्रभात में हम अपने मन को निर्मल करें और आरंभ करें विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना से। श्रोताओं, भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, विनम्रता और सही निर्णय से प्राप्त होती है। उनके विशाल कान हमें अधिक सुनने, छोटी आँखें गहराई से देखने और उनका विशाल उदर जीवन की हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। लीजिए सुनिए गणेश जी की आरती।

श्रोता श्री कृष्ण केवल बांसुरी की मधुर तान नहीं बल्कि कर्म योग का अमर संदेश है। वे प्रेम में माधुर्य, नीति में बुद्धिमत्ता और संघर्ष में निर्भयता का प्रतीक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्तव्य करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। लीजिए सुनिए भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति रचना।

श्रोता वंदना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए हनुमान जी की भक्ति रचना। श्रोता हनुमान जी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप विनम्रता है और सामर्थ्य तभी सार्थक है जब वह सेवा, समर्पण और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया प्रत्येक कार्य सफल होता है। आइए सुने हनुमान जी की महिमा।

कबीरदास जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी जहां सत्य और शुद्धता है वहीं जीवन की वास्तविक शक्ति है। आज भोजन में मिलावट हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, नकली दूध, मिलावटी घी, कृत्रिम रंगों से बनी हुई मिठाइयाँ, रसायनों से पकाए गए फल, नकली मसाले, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार बना रहे हैं। मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लीवर की जो समस्याएं हैं, इनके पीछे कई बार ऐसी मिलावट भी एक कारण बनती है। लेकिन श्रोताओ, क्या केवल भोजन ही मिलावटी है? ऐसा नहीं है। आज शब्दों में भी मिलावट है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन में कटुता है। रिश्तों में अपनापन दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे स्वार्थ भी छिपा हुआ हो सकता है। मित्रता में लाभ का हिसाब किताब है और सेवा में प्रसिद्धि की इच्छा और प्रेम में अपेक्षाओं का बोझ, यह भी तो मिलावट ही है। और सोचिए, यदि पानी में थोड़ी सी गंदगी मिल जाए, अशुद्धता मिल जाए, तो हम उसे पीना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर जीवन में ईर्ष्या, लालच, छल और झूठ की मिलावट को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? श्रोताओ, हमारे पूर्वज कहते हैं, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार, यही स्वस्थ समाज की नींव है। आज सोशल मीडिया के युग में खबरों की भी मिलावट होने लगी है। आधी अधूरी जानकारी, अफवाहें और झूठी खबरें समाज में भ्रम और तनाव पैदा करती हैं। इसलिए केवल भोजन ही नहीं, सूचना को भी परखना आवश्यक है और सही और सच्ची सूचनाओं के लिए, सच्ची खबरों के लिए आप आकाशवाणी पर भरोसा कर सकते हैं। प्रमाणिक खबरें, प्रमाणिक सूचनाएं आपको आकाशवाणी और दूरदर्शन से मिलती हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम मिलावट से बचें कैसे? खाद्य पदार्थ जो हैं वो हमेशा विश्वसनीय स्थान से हमें खरीदने चाहिए। जो पैकिंग के खाद्य पदार्थ हैं उस पर पैकेट पर जो निर्माण तिथि है, गुणवत्ता का चिन्ह है और जो समाप्ति की तिथि है, उसे अवश्य देख लेना चाहिए। और घर में जहां संभव हो सरल घरेलू परीक्षण को अपनाएं, ताज़ा, मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों को ही प्राथमिकता दें। और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री की जो शिकायत है वो संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग से करें, प्रशासन से करें और कार्यवाही करें। सिर्फ उसे यूं ही ना छोड़ दें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने का ये हमारा दायित्व है कि हम समाज के प्रति भी सोचें कि हमारे साथ जो गलत हुआ है वो दूसरों के साथ ना हो। और जीवन की मिलावट से बचने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, लालच की जगह संतोष को अपनाएं और दिखावे से अधिक सादगी को महत्व दें। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी दें। और याद रखिएगा कि शुद्धता जो है केवल भोजन की नहीं, मन की भी आवश्यक है। मन शुद्ध होगा तो वाणी मधुर होगी, व्यवहार सरल होगा और समाज भी स्वस्थ बनेगा। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य और शुद्धता ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इसी संदेश

देश के साथ अब सुनते हैं एक प्रेरक गीत जो जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को सुंदर ढंग से व्यक्त करता है।

तो अभी आपने गीत सुना गंगा और जमुना फिल्म का, हेमंत कुमार और साथियों के स्वर में शकील बदायूनी के शब्द थे और नौशाद ने संगीतबद्ध किया था। श्रोताओं, कहा गया है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके काम से पहचाना जाता है, और काम तभी पूजा बनता है जब उसमें ईमानदारी का दीपक जलता हो। और जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है, प्रतिभा तो अनेक लोगों के पास होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा, सच्चाई और समर्पण रखता है, वही व्यक्ति समाज में विश्वास अर्जित करता है। और ईमानदारी केवल यह नहीं है कि हम किसी का धन न लें, किसी के साथ छल न करें, सच्ची ईमानदारी यह भी है कि जो दायित्व तो हमें सौंपा गया है उसे पूरी लगन और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम निभाएं। एक छोटे से कारीगर की कल्पना कीजिए, वो एक मंदिर के लिए पत्थर तराश रहा है। कोई उसे पूछता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये पत्थर तो मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर लगेगा, इसे कौन देखेगा? तो वो कारीगर मुस्कुराकर कहता है कि लोग देखें या ना देखें, लेकिन मैं तो देखूंगा और मेरा ईश्वर भी देखेगा।

श्रोतो, यही है काम के प्रति ईमानदारी। और जब हमारा विवेक हमारा सबसे बड़ा बड़ा जो निरीक्षक बन जाए, तब हमारे कार्य में उत्कृष्टता अपने आप आ जाती है। आज के समय में लोग अक्सर परिणाम की चिंता अधिक करते हैं और कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान कम देते हैं, और जल्दी सफलता पाने की होड़ में कई बार शॉर्टकट अपनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि शॉर्टकट से मिली सफलता जो है वो क्षणिक होती है, जबकि ईमानदारी से किया गया कार्य वर्षों तक सम्मान दिलाता है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी हर कार्य का अपना समय होता है, और यदि हम धैर्य और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे द्वार पर दस्तक देती है। और श्रोताओं, जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो भी हमें यही शिक्षा देती है। सूर्य जो है प्रतिदिन समय पर उदित होता है, नदी बिना रुके बहती रहती है, वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल और छाया देते हैं, वे अपने काम के प्रति कभी लापरवाही नहीं करते हैं। और यही कुदरत अपना धर्म निभाना छोड़ दे तो जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार ना रहे तो समाज का विश्वास टूटने लगता है। और हमें याद रखना चाहिए कि ईमानदारी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो धन या पद नहीं है, बल्कि आत्मसंतोष है। रात को निश्चिंत होकर सो पाना, अपने किए हुए कार्य पर गर्व कर पाना और लोगों का विश्वास जीत लेना, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो आज के दिन को हम एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू करें कि हम जो भी काम करें, चाहे वो घर का हो, कार्यालय को हो, खेत का हो, दुकान का हो या समाज सेवा का हो, उसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो भाग्य को भी बदलने में देर नहीं लगती है। तो आइए सुने इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर एक और गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने नया दौर फिल्म का नगमा सुना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों के स्वर में। साहिर के शब्द थे और ओपी नैयर का संगीत। और लीजिए सुनिए एक संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, हमारी सेहत खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन यदि रिश्ते खो जाएं तो जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो जाता है। जो इंसान है, मनुष्य है, इस संसार में अकेला आता है, लेकिन जीवन की पूरी यात्रा रिश्तों के सहारे तय करता है। जन्म लेते ही माँ की ममता

हमें अपनी गोद में समेट लेती है। पिता का विश्वास, भाई बहन का स्नेह, मित्रों का साथ, जीवन साथी का समर्पण और समाज का अपनापन, यही वे धागे हैं जिनसे जीवन की सुंदर चादर बुनी जाती है। आज विज्ञान ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन मनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे मोबाइल में सैकड़ों संपर्क हैं, नंबर सेव हैं, पर मन की बात कहने वाला एक व्यक्ति भी कई बार नहीं मिलता है। इसका कारण यह नहीं है कि रिश्ते कम हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमने रिश्तों को समय देना कम कर दिया है। रिश्ते किसी अनुबंध से नहीं चलते, वे विश्वास से चलते हैं। वे अधिकार से नहीं बल्कि अपनत्व से खिलते हैं। और जहां संवाद समाप्त होता है वहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इसलिए रिश्तों को जीवित रखना है तो समय दीजिए, सम्मान दीजिए और सबसे बढ़कर सुनने की आदत को विकसित कीजिए। श्रोताओं, कबीरदास जी ने एक दोहा जो कहा वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारे जो शब्द हैं वो रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें कि हमारी बात सामने वाले के मन में फूल खिलाएगी या कांटे बोएगी। और जीवन में सफल वही व्यक्ति नहीं है जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है या बड़ा पद है। वास्तव में सफल वह है जिसके सुख दुख में साथ खड़े होने वाले अपने लोग हों। और जब कठिन समय आता है तब बैंक बैलेंस नहीं, रिश्तों की पूंजी काम आती है। श्रोताओं, तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय देंगे, माता पिता को समय देंगे, मित्रों से हालचाल पूछेंगे और रूठे हुए अपनों को मनाएंगे, और किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुस्कुराकर बात करेंगे जो शायद हमारी एक मुस्कान का इंतजार कर रहा हो। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। उन्हें प्रेम, विश्वास और समय का जल मिलता रहे तो वो जीवन भर छाया देते हैं। और इसी सुंदर भावना के साथ आइए सुनते हैं एक सदाबहार और मधुर गीत जो रिश्तों और जीवन की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती के साथ व्यक्त करता है।

0: श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे। और आपके जीवन में रिश्तों की गर्माहट बनी रहे, अपनों का स्नेह सदैव आपके साथ रहे और हर सुबह प्रेम, विश्वास और मुस्कान का नया संदेश लेकर आए। इन्हीं भावनाओं के साथ संजीव कालिया को सुप्रभात से अनुमति दें। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात करीले हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो

0: अपने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने

0: स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
4: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs,

0: प्रिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवच एंड अंकुश पंघाल क्लिंच द गोल्ड मेडल्स, वाइल जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन एंड नरेंद्र बेरवाल वॉन सिल्वर मेडल्स इन देयर रिस्पेक्टिव वेट कैटेगरीज। इंडिया ऑल्सो एंजॉयड सक्सेस इन पैरा एथलेटिक्स, प्रोड्यूसिंग अ मेमोरेबल वन टू फिनिश इन द मेन्स 557 शॉट पुट इवेंट। सोमन राणा क्लेम्ड द गोल्ड मेडल वाइल शुभम जोयाल सिक्योर्ड सिल्वर। द एथलेटिक्स कंटिंजेंट एडेड 3 मोर मेडल्स इन द मेन्स ट्रिपल जंप, प्रवीण चित्रवेल वॉन सिल्वर एंड सेल्वा प्रभु तिरु Maran took bronze, while long distance runner Gulveer Singh earned his second medal of the games by clinching bronze in the men's 5000 meter final. Judoka Unnati Sharma also added to the glory by bagging bronze medal in the women's 63 kg event. Rupesh Rathore for Akashwani News.
1: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host button during the closing ceremony of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise." Also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers, is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shined with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमे मौसमियात ने आज गुजरात के 6 ज़िलों में तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में

मुल्क भर के 10,000 से ज़्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रज़ाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रज़ाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज़्यादा शराकत दार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा ताकि अवाम में मनशियात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फ़रोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक क़ुव्वत बनती है जब उन्हें सही मौक़े और सही सिमत मिल जाए ताकि वो पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी ताबीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निज़ाम आत्मनिर्भर भारत मिशन

0: आए ताकि वो पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी ताबीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निज़ाम आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया स्कीम को आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के नौजवानों की सलाहियतों ने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मार्केट में तब्दील कर दिया है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, नीज इख्तिराआत में और प्राइवेट सेक्टर खलाई मिशन में नई नई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और दुनिया भर में तमगे जीतने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 की तैयारियों का जायज़ा लिया ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट, पूरी तरह महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनक़द किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनक़द किए जाने में शामिल दीगर तरफ़ैन के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदामात, सिक्योरिटी के निज़ाम और नीट पीजी 2026 के लिए मुतारिफ़ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी मुदाखलतों के मुतालिक वज़ीर मौसूफ को तफसीलात बताई गईं। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाज़ाब्ता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज, इनक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के ज़रिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब नड्डा ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर उम्मीदवार बिला रुकावट, महफूज और दुश्वारियों से कतई पाक इम्तिहान के अमल का तजुर्बा करे। दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आंगन में मुनक़द एक तकरीब के मौके पर PBG सॉलिडरेथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मिजोरम के गवर्नर जनरल VK सिंह, जो इस मुहिम के सरपरस्त हैं, भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि सॉलिडरेथन शहरियों और मुसल्ला अफवाज के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसे फौजियों के लिए दौड़, फौजियों के साथ दौड़ के तसव्वुर से रहनुमाई मिली है। हकीकी हीरो भारत के मुसल्लह अफवाज को तआवुन के मौजू पर मरकूज यह तकरीब फौजियों के इखलास, हिम्मत और कुर्बानी के तईं खिराज अकीदत तो है ही, साथ ही ये शहरियों को उनके साथ सरगर्म शराकत दारी के ज़रिए यकजहती का मौका भी फराहम करती है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खात्मे के मकसद से शुरू किए गए एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत 6307 बच्चों को बचा लिया है। ये कार्रवाई पिछले माह की पहली तारीख से

0: 31 तारीख तक जारी रही। इस कार्रवाई की क्यादत ख्वातीन के सेफ्टी विंग ने की, जिसके लिए उसने ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे, लेबर महकमे, सेहत के महकमे, बच्चों की बहबूद की कमेटियों, बच्चों के तहफ़ के ज़िला यूनिटों और रजाकार तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। 124 सब डिवीज़न टीमों के तकरीबन 620 पुलिस एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कवानीन और तरीक़ार के मुतालिक तरबियत हासिल करने के बाद टीमों ने उन मकामात पर छापे मारे जहाँ बच्चा मजदूरी आम है। इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट के भट्टे, मकैनिकों की दुकानें, तामीरी मकामात और चाय खाने शामिल हैं। बचाए गए बच्चों में से 5737 को उनके अहले खाना के पास भेज दिया गया, जबकि 570 को बच्चों की देखभाल के मरकजों में भेजा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात में महकमा मौसमियात ने आज 6 ज़िलों के तमाम इलाकों में बहुत तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन ज़िलों में मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद शामिल हैं। बारिश का यह सिलसिला अब सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी भर गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
1: गुजरात में बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और अब मानसून कल से सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई ज़िलों में बारिश का पानी भर गया है। मोरबी में सबसे ज़्यादा 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नशेबी इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। इंतहाई तेज़ बारिश की वजह से 20 आबी ज़खायर अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं। तेज़ हवाओं के पेश नज़र माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 2 दिन तक समंदर में ना जाएँ और पूरे गुजरात की तमाम बड़ी बंदरगाहों पर मकामी एहतियाती सिग्नल नंबर 3 जारी किया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खोंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी के आसार जाहिर हुए हैं, तहम हुक्काम बदस्तूर हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी की बुलंद सतह अब भी महानदी के नशेबी इलाकों के लिए ख़तरा बनी हुई है। रियासती हुकूमत नशेबी अजला कटक, पूरी, जगतपुत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा के हालात पर मुसलसल नज़र रखे हुए है, जहाँ सैलाब का पानी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा है। केरला में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके बाइस मामूल की ज़िंदगी मुतासर है और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात के महकमे ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा 7 दिनों के दौरान वक्फे और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने इन दिनों जारी जुनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब की सूरत हाल से मुतासरा रियासतों को तआवुन देने की गरज से कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त के रियासती फंड SDRF के मरकज़ के हिस्से से 2,117.85 करोड़ रुपये पेशगी जारी किए जाने की मंजूरी दी है। 7 मुतासरा रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को माली बरस 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी है। दीगर रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद तेज़ करने की धमकी दी है और कहा है कि जब तक ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद नहीं करता और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आता, अमरीकी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ताज़ा सिक्योरिटी जारी करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी शहरियों से कहा है कि अगर कशीदगी में इजाफा हो तो वो खित्ते को छोड़ने पर गौर करें या फौरी रवानगी के लिए तैयार रहें। बढ़ती हुई कशीदगी के असरात अब गजा और लिबनान तक भी पहुँच गए हैं, जहाँ हमास की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी के फ्रेमवर्क के तहत हथियार डालने की आमादगी जाहिर करने के बावजूद इसराइल ने नए हमले किए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो इसराइल के अहम बुनियादी ढांचे और मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार है। भारत ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। उसने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगों समेत कुल 39 तमगे जीते हैं। भारत के लिए ताज़ा तरीन तमगा गुलवीर सिंह ने हासिल किया है। उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाजी में भारत ने सोने के 7 और चांदी के 3 तमगे जीत कर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुक्केबाजों में प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमणि सिंह, लवलीना बुरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉर्ट पुट F57

0: मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और अहम सुर्खी है, मशरक़ वस्ता के हालात संगीन, अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग की खबर भी बेशतर अखबारों में नुमाया है।
0: और अब खबरनामे की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 ज़िलों में तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे और प्रादेशिक समाचार जयपुर से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माई भारत पोर्टल के जरिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान शुरू होगा। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से सीधे भिक्षु नीलम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वो जिले के लिए 436 करोड़ रुपए से अधिक के 344 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा समारोह में लाभार्थियों को योजना

0: का लाभ भी वितरित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कर्तव्य पथ संवाद, नेतृत्व और निष्ठा का मिलन कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल उदयपुर जिले की बीड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में लोगों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं के सुझावों और विचारों को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। बैठक में श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। इधर जयपुर में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने नीट यूजी काउंसलिंग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी मेडिकल संस्थान, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा राज्य काउंसलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लागू किए गए नए नियमों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे दिन न्यायपालिका और विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता न्याय तक त्वरित, सुलभ और कम खर्चीली पहुंच का प्रभावी माध्यम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने इसे विवाद समाधान का पहला विकल्प बनाने पर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने प्रदेश में मध्यस्थता, प्रशिक्षण और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की जानकारी दी। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में पारिवारिक, आपराधिक, व्यावसायिक और कार्यस्थल संबंधी विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों और निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यस्थता समाज में विश्वास कायम करने और न्याय को अधिक जनोन्मुखी बनाने का प्रभावी माध्यम है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज और सुधार और समाज के संगठन के लिए विशेष काम किया। उन्होंने बताया कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। श्री बागड़े कल अजमेर के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सभ्यता, नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें ईमानदारी के गुण विकसित हो सकें। समारोह में विभिन्न लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी अवलोकन किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक

0: अधिक स्वर्ण पदक हैं। इधर प्रदेश से कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की चेंटिल रीड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉक्सर हैं। उनकी जीत पर कोटा में जश्न का माहौल है।
1: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपने इस स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: इसके अलावा मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पांघल ने स्वर्ण, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अरुंधति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज देश भर में फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस मनाया जा रहा है। अगस्त के पहले रविवार को मनाए जाने वाला ये दिन दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम बैंड पर 909 किलोहर्ट्ज़, FM पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं पतराम नाथ व पार्टी। लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज आप पतराम नाथ व पार्टी की गाई लोक रचनाएं सुन रहे हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।

0: श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे पतराम नाथ व पार्टी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनेंगे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं साजन फिल्म के इस दो गाने के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। लीजिए सुनिए।
1: रेशम की डोरी

और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए शिकारी फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फारूक कैसर के शब्द हैं और जी एस कोहली का संगीत है।

सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया। बोली जी, कार्यक्रम में आप सुनिए गुमराह फिल्म के लिए आशा भोंसले और महेंद्र कपूर को

0: और लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए जोनी मेरा नाम फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

अली जी श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए लीडर फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत दिया है नौशाद ने।

श्रोताओ, अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम में युगल हिंदी फिल्मी गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम जिस अजीम हस्ती की बात कर रहे हैं, उनकी कलम में मोहब्बत का वो जादू था जो हवाओं में भी इत्र घोल देता था। जी हाँ, आज के हमारे फनकार हैं बॉलीवुड के रोमांस के राजा, मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी साहब। हसरत साहब की शायरी में जो सादगी और मासूमियत है, वह सीधे दिल में उतर जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हसरत जयपुरी साहब के शाहकार गीत से, जिसे सुनते ही लगता है जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। ये गीत है फिल्म सूरज का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया और राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर यह गीत फिल्माया गया था। लीजिए सुनिए।

और शोतावाइये अब सुनते हैं प्यार के इकरार और मासूमियत से भरे हसरत जयपुरी के लिखे ये खूबसूरत नगमे। फिल्म का नाम है संगम और गीत के बोल हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार, और आज के फनकार हैं गीतकार हसरत जयपुरी। और लीजिए अब सुनिए जंगली फिल्म का यह नगमा। गीत है एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर ने इसे गाया। लीजिए सुनिए।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका,
5: हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और राज कपूर की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक अमर गीत दिए। हसरत जयपुरी को उनके लिखे गीतों के लिए 2 बार प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। पहला सूरज फिल्म के बहारो फूल बरसाओ गीत के लिए और दूसरा अंदाज फिल्म के गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना के लिए। तो लीजिए, अंदाज फिल्म का ये नगमा आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत शंकर जयकिशन का है, शब्द रचना हाथ

शुतो बरसात फिल्म की कामयाबी के बाद राज कपूर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम, दीवाना, अराउंड द वर्ल्ड, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल फिल्में शामिल हैं।

हसरत जयपुरी कहा करते थे कि वे जब भी लिखते थे तो लफ्ज़ अपने आप धुन की ताल पर नाचने लगते थे। और लीजिए अब सुनिए फिल्म तेरे घर के सामने का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत है दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो रे। इस गीत को देवानंद और नूतन पर फिल्माया गया था। एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था।

और लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए ससुराल फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और गीत है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे।

श्रोताओं, हसरत जयपुरी ने फिल्मों के नाम के ऊपर कई टाइटल गीत लिखे, जिनमें गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, गुमनाम फिल्म का, तेरे घर के सामने फिल्म का गाना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, और एन इवनिंग इन पेरिस, रात और दिन फिल्म का, रात और दिन दिया जले, ऐसे कई गीत जो टाइटल सॉन्ग थे उन्होंने लिखे। लीजिए अब सुनिए, जब प्यार किसी से होता है फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, हसरत जयपुरी ने मस्ती और उल्लास से भरे हुए नगमे भी लिखे। जब मस्ती और थिरकन की बात आती थी तो उनके शब्द हवा में तैरने लगते थे। लीजिए सुनिए प्रिंस फिल्म का ऐसा ही एक नगमा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया और बोल हैं बदन पे सितारे लपेटे हुए।

शो तो अभी आपने झुक गया आसमान फिल्म का नगमा सुना। इससे पहले प्रिंस फिल्म का नगमा तकनीकी बाधा के कारण आप नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी का ही लिखा एक और गीत। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। शंकर जयकिशन ने संगीत दिया और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है।

और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए आरजू फिल्म के लिए लता मंगेशकर को गीत हसरत जयपुरी का है।

श्रोताओ, 17 सितंबर 1999 को हसरत जयपुरी भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने सदाबहार गीतों के जरिए वे आज भी हर दिल में जिंदा हैं। सच कहा गया कि हसरत जयपुरी के लिखे इन तरानों को भला कौन भुला सकता है। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा है और 11 बजने वाले हैं। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हसरत जयपुरी साहब भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन जब तक इस ज़मीन पर मोहब्बत जिंदा है, हसरत जयपुरी के लिखे शब्द हर मोहब्बत करने वाले दिल में धड़कते रहेंगे। उनका एक शेर है कि हम छोड़ चले महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। और लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुने, पगला कहीं का फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे आज के फनकार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। रिश्ते आवाज़ से भी बन जाते हैं, कुछ लोग दिल में यूं ही बस जाते हैं। आप जैसे श्रोताओं का साथ मिले तो हर गीत में नए रंग खिल जाते हैं। तो चलिए संगीत के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं चंद अल्फाज के साथ कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ।

श्रोताओं, अभी आपने मोहम्मद अज़ीज़ और कविता कृष्णमूर्ति को सुना। फिल्म का नाम था दो मतवाले। गीत के बोल संतोष आनंद के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की थी पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इसी गीत के लिए फरमाइश की है। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर, इसी गीत को सुनना चाहा था। चक 15 पीएस से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोशन वेकनूर, इसी गीत की फरमाइश की थी हमें जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा।

नाइवला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नावरकर, निर्मला नावरकर, विशाल नावरकर। इसी गीत को सुनना चाहा था। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। संपूर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख। अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद, मेहुल, पूनम, कोमल, चंदन, अंकुश, लक्षिव, माधव, रवि कुमार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था रोटी। इस गीत की फरमाइश की थी खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौधरी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। इसी गीत के लिए हमें संदेश आया है भवर सिंह मीना, तन्मय मीना, हमीरी कला, झुंझुनू से। सिद्धार्थ नगर, दयापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। आदर्श नगर, मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा, निवान शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिगिया, नमन ढिगिया, अपार ढिगिया। वड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मंडी केसे सिंहपुर से श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसर, पमीला भावसर, भावेश सनी भावसर। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज कालका, साहिल बजाज। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मंजिल। गीत योगेश का लिखा था और संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत की फरमाइश की थी हमें गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश, युदव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारण, कीडू राम झोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखर और सुनील शर्मा, खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। इसी गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, जिशान खान, चक 58 एनपी रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरबंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट, मोनिका, गीतांजलि मलखट, कवई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, सूरतगढ़ वार्ड नंबर 10 से मनसाराम श्री श्रवण कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार, भगवान राम, मनोज कुमार, नितेश, करण, कृष्णा, दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, नई दिल्ली मोती नगर से

मानसी, गौरव, अनिल, कविता, अरोरा। मालव, हिंगड़ी, आलोर जिला। रतनाम, एमपी से। जगदीश धाकर, नायमा। रंजू बाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी, दिल्ली से। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन से। सुल्तान सिंह तरर, कृष्ण मुकेश तरर, रामचंद्र तरर, कपिल देव तरर, हिमानी जाखर। इसी गीत की फरमाइश की थी हमें गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम, किरोड़ीवार, सुरेंद्र भादु। इसी गीत को सुनना चाहा था नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत।

एक दूसरे के लिए। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की थी, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहा था उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्वनी चौक, गोविंद चौक, टोनी, दीवान लव दीवान, राधे, भाविक डिंगरा, अतुल शर्मा, धनोरी, तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। इसी गीत की फरमाइश की थी गांव बड़वाला हनवंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माँ विद्या देवी और सारा मायल परिवार। तहसील भाटा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, फूसाराम बेल, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, कीनू और परिवार के लोग। इसी गीत की फरमाइश की थी आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहरा जहां। मंडी के सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल, प्रजापति। मनसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविल सिंह। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारेख, भूपेंद्र पारेख, जगत मडावर, राजू मडावर। इसी गीत को सुनना चाहा था राजकोट से जेमिन जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन। श्रीगंगानगर से नेकी राम, बंसीलाल, जोनी बंसीलाल, धनराज बंसीवाल। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत को जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंद्र, वरिंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत। नादिर महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी, आवाज़ें लता मंगेशकर।

किशोर कुमार की है। इस गीत की फरमाइश की है राय सिंह नगर से धनराज बाबू, सोनलाल जहांगीर, चेतन राम सरस्वा, प्रदीप सरस्वा, राजेंद्र, कृष्णा अरविंद, विजय काश्निया, भांबू, बीर शहर महाराज से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्र, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल, पीबी कुलथे, मोला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कोसर, जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा,

मोहम्मद इकमाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कोसर। जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। फाजिलका रोड मलोड से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला, जगदार जग्गा। इसी गीत की फरमाइश की है सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट, अंकित कागड़ा। दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। गांव मंडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, योगेश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की हैं। इस गीत की फरमाइश की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। पनवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से एंजी अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। गांव ढाड़ी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां। कोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, कैलाश युवान, लक्षिता, नरेंद्र सुथार। जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, माणक, उषा बाला, देवी प्रजापत। खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। सांगली जिले के जस शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुला, सबाहत, कीरत हुजरे, रेहान शेख। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बरगुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, धनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का। उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, मिथिन नचानी, बाबू भाई चांदीवाला। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। रानी जाम, मीटू जाम, रानी बाजार बीकानेर से। इसी गीत की फरमाइश की है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। बुलडाड़ा बंडशिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। लखवाली हेड से मास्टर भवलाल, कृष्णा, विशाल, राजवाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम। आसाम से हितेंद्र दास। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चांदनी, आवाजें सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की। इस गीत की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुग छत्तीसगढ़ से बलकण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार, सादो शहर राजस्थान से रामकुमार रिवार, चंद्रकला रिवार, शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सागर लखनादून मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे, व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार साहिल, मिसेस संतोष साहिल, राजश्री गौरव साही, महरौली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर, सहिजप्रीत सिंह, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान, गांव होडू जिला बालोतरा से उमेदाराम, सुरेश कुमार, सुतेश गोदारा। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में सुनिए साजन का घर फिल्म का ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम शवन का। इस गीत की फरमाइश की है गजरू वाला से शमशूल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैज़ान खान अनु खान उस्मान अंसारी कलीम अंसारी। राहुल नगर अमरावती महाराज से सिद्धार्थ गोडाने हीरामन शेडे किशोर धनाडे संजय कुमार केडाम हिम्मत राव शिंगारे दीपक कुन्हाड़े राजेंद्र गुप्ता। कंवर कॉलोनी बड़वाह से जिला खरगोन एमपी प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। गांव नलोरी तहसील सिवानी मंडी जिला हिंसार से सज्जन जागड़ा राजबाला कार्तिक वेदांश। कस्बा गुनोर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरीन फरान फारिया ताहिरा। चक सात डीबीएन भादुवाली ढाणी से टेकचंद सारन संतोष देवी सत्यप्रिय चारण जय सिंह चारण बिटिया योगीश्री रंजीत सिंह सुथार गुरुदेव सिंह भगाड़िया हनेक सिंह भगाड़िया। गांव पंचोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार जनसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक जनसोलिया। भागसागर साधु शहर से मंगत राम धीगड़ा सुमन संजना सचिन कुमार धीगड़ा। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिली चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी बेबी हिमाक्ष। विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से शाहूनगर यवनमाल से राहुल मनवर सल्ला मनवर विशाल मनवर चेतन मनवर रोशनी मनवर बेबी प्रियांशी। मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया हीना सकीला जश्मीन राजिया सुल्तान अख्तर अंसारी सूरज।

Uma Javed Ansari. गांधीनगर गुजरात से जी के पमार, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिगेस्ट्रो, रोजी डिगेस्ट्रो, पर्ल डिगेस्ट्रो, विलिस डिगेस्ट्रो, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर हर्जल मालिक, निपी साहनी, सुनीता साहनी, चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकन सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विक, मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान इमराना नाज सूरतगढ़ से, अलिका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी, हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, रोहित शर्मा, सचिन शर्मा। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के लिए फरमाइश हम तक भेजी है मारारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनथ यसफ अब्बासी, रसीद फारसी, किदवई नगर सुतपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबिया अंजुमन खान, रायसिंह नगर से सोनलाल जागीर, सुनील कुमार, नरसी कुमार, प्रवीण कुमार। इसी गीत के लिए हमें पत्र पहुँचे हैं श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनिवाल, शांति बेनिवाल, मंजू मोहित हेमंत। श्री गंगानगर से ही बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा।

इसी गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर।

महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे बच्चों का बढ़ता वजन एक गंभीर समस्या, मानसून में कैसा हो पहनावा, बढ़ती महंगाई, बढ़ता संकट, सावन के पारंपरिक व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। साथ ही आप वार्ता सुनेंगे सोशल मीडिया और महिलाओं की सकारात्मक पहचान। वार्ताकार होंगी नीतू बिश्नोई।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारी शाम की सभा में। इसमें आज आप सुनेंगे फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

सरायकीका समय रहेगा शाम 6:05 पर। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे नरमा कपास में कीट नियंत्रण, सुअर पालन, बच्चों और पशुओं को रखे जल भराव से दूर, बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 पर और रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुहाना समय हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, मन में पुराने यादों की दस्तक हो और ऐसे में मधुर गीत सुनने को मिल जाएं, तो ऐसा लगता है मानो जीवन कुछ पल के लिए ठहर गया हो। बशीर बद्र साहब का एक मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। संगीत भी कुछ ऐसा ही है, ये हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ कभी हमारी हंसी गूंजी थी, जहाँ कुछ सपने बसे थे और जहाँ कुछ यादें आज भी हमारा इंतज़ार कर रही है। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं इस गीत से। प्रेम में समर्पण होता है, विश्वास होता है और कभी कभी दर्द भी होता है, और आंखें अपनी कहानी स्वयं कहने लगती है। कितना अजीब है कि हम दोनों ही बिछड़ गए, तुम अपनी जिंदगी में और मैं अपनी यादों में। सुनते हैं हीना फिल्म का बहुत ही फेमस गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

साथियों, कहते हैं कि सच्चे प्रेमी प्रतीक्षा भी एक इबादत की तरह होती है। इंतजार का हर पल किसी प्रार्थना की तरह महसूस होता है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम की, संगीत नदीम शवन का और गीतकार समीर।

साथियों, पहली मुलाकात, पहला एहसास और दिल में उठती अनगिनत धड़कनें, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। लीजिए सुनिए दामिनी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम की है, संगीत से सजाया है नदीम शवन ने और गीतकार हैं समीर।

साथियों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिनका कोई उत्तर नहीं होता। मन बेचैन रहता है और दिल बार बार यही कहता है कि ये क्या हुआ। तो सुनते हैं दर्द फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का।

साथियों, किसी को अपने दिल में बसाना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण की ज़रूरत होती है। सुनते हैं फकीरा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

साथियों, आज के इस सुरीले सफर में हमने प्रेम के अनेक रंगों को महसूस किया। कहीं मिलन था, कहीं विरह, कहीं उम्मीद तो कहीं यादों की एक लंबी दास्तान। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करने की लक्ष्मी को दे इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक पंकज उदास को।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है बायोगैस संयंत्र आज की आवश्यकता।
1: किसान भाइयों, राम राम। भाई लोगों, आपने जी की खेती पाती है वह आपा पुराने टाइम गए जिका तौर तरीका अपना बड़ा बुजुर्ग आपा ने सिखा के गया है। बांगी तरीकाओं आज भी आपा अपनी खेती है बहुत सही तरीका।

और अच्छी व्यवस्था के साथ चलाता आन लाग रहा है। पर आज की जी की जरूरत है और आधुनिकता है बिने स्वीकार करता तका बदलाव जी को होने लाग रहा है, अपने भी बदलाव ने भी स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। बड़ा बुजुर्ग हमेशा कह करता भाई लोगों का, जिको आदमी बदलाव के सागे आगे बढ़े है भी मिनख ने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त हुए है। आप देखा यहाँ आजकल ऊर्जा को जिको उपयोगिता स्तर है वो दिनों दिन बढ़ने लाग रहा है और जिकी ऊर्जा की उपलब्धता है बाबी के मुकाबले बहुत कम है। ईंधन का भाव है वह भी निरंतर बढ़ने लाग रहा है और आपने विश्व की जिकी जनसंख्या वृद्धि है वह भी तुरंत गतियों बढ़ने लाग रही है। पेट्रोलियम सीमित है और ऊर्जा को जिको अभाव है, इस स्थिति में आजकल जिका विकासशील देश है बांग विकास को ढांचो भी हिलन लाग रही है। आज ऊर्जा की पूर्ति खातर मानव सभ्यता द्वारा जिका भी अपना आवश्यक स्रोत है बांगो लगातार दोहन करो जान लाग रही है। ईंधन की कमी ने पूरा करण खातर आप देखा तो कठे कठे जिका पेड़ है बाने काटनो शुरू कर दियो गयो है, जिनके फलस्वरूप पर्यावरण है वो भी दूषित होने लाग रही है। कठे कठे देखा तो सूखा की स्थिति उत्पन्न होने लाग रही है, मृदा क्षरण और जिको भूस्खलन है वो भी जोरा पर चलने लाग रही है। घरेलू ऊर्जा की जिकी भी समस्या है बिनकी पूर्ति अगर आपने सुचारू तरीकों करनी है तो इन्हें समस्त तका बायोगैस संयंत्र है इनको विकास करो जान लाग रहे हो। पशुओं के मल मूत्र, जैविक कचरा, जलीय और थलीय जिको भी अपशिष्ट है बिना पचा गए उपयोगी गैस वो प्रदान करे और बच्चड़ी जिकी उपयोगी खाद है वह आपने प्रदान करे। जिकाऊ के खेता में आपा जब बिना उपयोग करा तो माटी की उर्वरता शक्ति तो बढ़े ही बढ़े सागे सागे उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुए। आज विश्व भर में बायोगैस संयंत्र को प्रचलन बढ़ने लाग रहे है और भांत भांत का मॉडलों को निर्माण कर गए गैस प्राप्त करी जान लाग रही है। हालांकि आपा देखा तो बायोगैस संयंत्र है इनको निर्माण कराने खातर कोई बहुत ज़्यादा लंबो चौड़ो काम आपने को नहीं करनो, लेकिन इनकी शुरुआत करने पहले इस संयंत्र की स्थापना करने पहले कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जगह पर ध्यान देना आपने खातर बहुत ही जरूरी है। जिकाऊ के आपनों बायोगैस संयंत्र बिना कोई समस्या के कई साल तक आपने गैस और अच्छी खाद निरंतर प्रदान करते रहे। बायोगैस संयंत्र स्थापित करने पहले कुछ इसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिका की जानकारी आपने होनी बहुत जरूरी है। बात करें संयंत्र निर्माण खातर सबों पहले उचित जगह को प्रबंध और बायोगैस तकनीक की उचित जानकारी आपने होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र में डालन खातर पर्याप्त गोबर की उपलब्धता और उपयोग करने वाला जिका सदस्य है बांगी संख्या को भी आपने निर्धारण शुरू में ही कर लेना है। पशुओं उपलब्ध जिकी भी गोबर की मात्रा है बिंग अनुसार आपा अपने संयंत्र की क्षमता को चयन करा और पर्याप्त जिकी पानी है बिंगी उपलब्धता भी आपा देख लेवा। बायोगैस के प्रति उपलब्ध कई प्रकार का जिका भावुकता है या कह देवा कई प्रकार का अपने मन में संशय हुए है बांगी भी जानकारी आपने समय रहते थका ले लेनी चाहिए। जिकाऊ के कि प्लांट लगाए बाद अपने मन में कोई भी प्रकार को वहम ना रहे। प्रशिक्षित कारीगर है और अच्छी निर्माण सामग्री है बिंग भी आपने पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उपयोगकर्ता जिको भी है बिना बायोगैस प्रबंधन, रख रखाव और इंगू देखभाल किया करो जावे बिंग बारे में उचित जानकारी जब आपने होएगी तो आपा बिना अच्छी सलाह दे सकांगा। जिकी खाद आपने मिल रहा है तो बिंगे निकलन खातर पर्याप्त जगह की व्यवस्था और अच्छा गैस उपकरण की भी आपने कने उपलब्धि होनी चाहिए। जलवायु के टाइम टाइम पर परिवर्तन और माटी की जिकी स्थिति है माटी के प्रकार की है बिंगी भी जानकारी आपने ले लेनी चाहिए। खेती की के पद्धति आपाई में अपनावा और उपयोग में आने वाली जिकी खाद आपने मिले बिना आपा के तरीकों प्रयोग में ले सका। पानी का जिका जल स्रोत है रसोई घरों संयंत्र की जितनी दूरी है और संयंत्र के नज़दीक पेड़ांगो ना होना आंगो भी आपने पूरा ध्यान रखना है। संयंत्र में गोबर डालने के सागे सागे जिकी खाद आपने मिलने लाग रही है बिंगो सही प्रबंधन करण खातर जिको भी व्यक्ति आपा नियुक्त करा बिंगी इस कार्य में पूरी कुशलता होनी चाहिए पूरी निपुणता होनी चाहिए। विभिन्न

0: अभियान की नई दिल्ली में वर्चुअली शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवा हिस्सा ले रहे हैं। इसमें माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों और गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय से आयोजित नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला कांस्टेबल, अश्वारोही पुलिस बल, महिला सशक्तिकरण पर आधारित आकर्षक झांकियों और खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता कर महिला सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रैली महिला सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक जागरूक के प्रति जनभागीदारी को सशक्त बनाने की प्रेरणादायी पहल है। इससे पहले श्री शर्मा ने झाड़ोल तहसील के बीड़ा गांव में प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया, स्कूली बच्चों और महिलाओं भी से भी चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और कई मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज राजसमंद भी जाएंगे। इस दौरान वे जिले में 436 करोड़ रुपए से अधिक की 344 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का कर्तव्य पथ संवाद, नेतृत्व व निष्ठा का मिलन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों के साथ तैयारियों का आकलन किया। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और उच्च सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रदेश में वन सोमवार से एक दिन पहले आज रविवार को कई स्थानों पर बरसात हुई है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर चला। पाली में सुबह बादल छाए रहे और जिला मुख्यालय सहित सोजत, बूसी, मारवाड़ जंक्शन और बाली सहित कई क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बरसात हुई। बारा से भी रुक रुक कर बारिश के समाचार हैं। इससे पहले कल शाम सलूम्बर में तेज बरसात हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालौर, पाली, सिरोही जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कल से मानसून कमजोर पड़ेगा और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में दो पंक्तियाँ हमारे प्यारे बच्चों के लिए। ना ये धरती ना ये आसमान चाहिए, ना ही खुशियों की कोई दुकान चाहिए। खुदा से छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, बच्चों के चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। लेकिन बहनों, पता नहीं क्यों हमें आज के बच्चों में वो मुस्कान देखने को नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं, क्योंकि आज के बच्चों का जो जीवन है वो बहुत तनावग्रस्त हो गया है। और इस तनाव के बहुत से कारण हैं, जैसे एक कारण अगर हम माने तो ये ले सकते हैं कि बच्चों में जो बढ़ता हुआ वज़न है वो उनके तनाव का कारण है और उनके लिए एक गंभीर समस्या भी है। क्योंकि जब बच्चों का वज़न बढ़ता है तो उनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनका बहुत अधिक प्रभावित होता है। बहनों, यदि बच्चे लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, यानी शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, बाहर खेलने कम जाते हैं और कोई दौड़ भाग भी नहीं करते हैं, और एक जगह पर बैठकर या लगातार टीवी देखना, मोबाइल चलाना या फिर ऑनलाइन क्लास, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों में मोटापा या वज़न बढ़ना एक आम समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो भी बच्चों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड चीज़ों का बहुत अधिक सेवन करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा आ जाता है। और इसके अलावा कुछ बच्चों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है और अधिक मीठा वज़न को बढ़ाता है। इसके अलावा बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, देर रात तक जागते हैं, यानी अगर नींद की कमी होगी तब भी मोटापा अधिक आता है। बहनों, अगर मोटापा अधिक आता है तो ये एक गंभीर संकट है आने वाले समय के लिए, क्योंकि समय रहते यदि इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अगर हम बात शारीरिक स्वास्थ्य की करें तो यदि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो कम उम्र में ही बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये तो खतरा बढ़ता ही है। इसके अलावा बच्चों का अगर वज़न अधिक है तो उनके घुटनों और हड्डियों पर भी दबाव अधिक पड़ता है। इसके अलावा यदि वज़न अधिक बढ़ रहा है और वज़न बढ़ने का कारण तो जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, और यदि ये सब बच्चा अधिक खाता है तो फिर बच्चे का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा हमने बात की कि मानसिक रोगों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यदि कम उम्र में बच्चे का वज़न बढ़ जाता है तो बच्चे को अवसाद, चिंता और तनाव, ये सब समस्याएं भी बच्चों को घेर लेती हैं। और बच्चे में जो वज़न बढ़ने की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या हम इसे माने सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो, और सभी जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो सभी माता पिता को ये सलाह देते हैं कि समय रहते बच्चों के वज़न को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यदि कम उम्र में वज़न बढ़ जाता है तो वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भविष्य की बीमारियों से यदि बच्चे को बचाना है, उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना है, तो ज़रूरी है कि बच्चों के खान पान पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता जागरूक हों, बच्चों का सही लाइफस्टाइल हो और उनकी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए जाने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। बहनों, वो कौन से बदलाव हैं जो हमें अपने बच्चों में करने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं एक गीत।

बहनों, जागरूक माता पिता बच्चों की दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके बच्चों के बढ़ते वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को स्वस्थ भोजन दें और नियमित शारीरिक गतिविधियाँ उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। और बहनों, सुबह का जो नाश्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस नाश्ते में हम सुबह मौसम के अनुसार फल, जूस, दूध और डेयरी उत्पाद शामिल करें, जिससे कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके अलावा बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो भी हम कम करें, जिससे कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में नींद ले सके। और वज़न को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा बहनों, हम बच्चे को ये सिखाएं कि वो दिन में कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक तेज़ चाल में चले। इसके लिए हमें बच्चों का सहयोग करना होगा, और बच्चा अगर अकेला नहीं जाता है तो हमें खुद बच्चों के साथ वॉक पर जाना चाहिए। इसके अलावा दौड़ना है, योग है, और या फिर बच्चे को हम डांस क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की जो शारीरिक गतिविधि है वो होती रहती है और वज़न नियंत्रित रहता है। इसके अलावा बच्चे को घर का बना हुआ ही खाना दें, जिसमें कम तेल हो, और बच्चे को संतुलित भोजन दें, और बच्चे के भोजन में फलों और सब्जियों को और दालों को ज़रूर शामिल करें। और यदि पहले से बच्चा फल, सब्जियां और दालें ले रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ा दें, और ऐसे पदार्थ जिनसे वज़न बढ़ने की संभावना है उनको हम अपने भोजन से हटा दें। इसके अलावा बच्चे को कोल्ड ड्रिंक, केक, बिस्किट और पैक्ड जो स्नैक्स वगैरह हैं इनका सेवन बिल्कुल कम कर दें। और बच्चे को मतलब 7-8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है, और इस नींद से बच्चा मोबाइल से भी दूर रहेगा और लैपटॉप और टीवी से भी दूर रहेगा। और जो अगर नींद बच्चा पूरी लेता है ना, तो बच्चे का शरीर रिलैक्स महसूस करता है और वज़न भी कंट्रोल में रहता है। तो बहनों, ये प्रयास बच्चा अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ना समझ है, इसके लिए हमें आगे आना होगा। तो बच्चे के सच्चे साथी के रूप में हम सब माताओं को ये हमारा दायित्व बनता है कि हम खुद बच्चे के साथ घूमने के लिए जाएं, योगा क्लास है या डांस क्लास है हम खुद ज्वाइन करें, साइकिलिंग है, ऐसे बहुत से काम हैं जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। और अब प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, अब सुनते हैं नीतू बिश्नोई की वार्ता, सोशल मीडिया और महिलाओं की सकारात्मक पहचान।
2: आज की हमारी वार्ता का विषय है सोशल मीडिया और महिलाओं की सकारात्मक पहचान। सोशल मीडिया शब्द का मतलब सामाजिक माध्यम। अब ये सामाजिक माध्यम क्या है और यह कैसे महिलाओं की सकारात्मक पहचान का माध्यम बना, इसके साथ ही इसकी उपयोगिता और विभिन्न पहलुओं को हम आज इस वार्ता के माध्यम से समझेंगे। आज के डिजिटल युग में अर्थात कंप्यूटर के इस युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। इसी में हमारे समाज की आधी आबादी अर्थात हमारी महिलाएं वर्तमान में सोशल मीडिया से जुड़कर अपने आप को एक सकारात्मक पहचान दिलाने में जुटी है। जरा एक पल के लिए

हम अपने अतीत अर्थात बीते हुए कल में चलते हैं। एक समय था जब महिलाओं की उपलब्धियां, उनकी बेहतरीन कला, उनका अथाह ज्ञान, घर परिवार की चार दीवारी और कुछ सीमित रिश्तेदारों तक ही सिमट कर रह जाता था। उस समय महिलाओं के पास कहने को बहुत कुछ था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। जब एक महिला के पास कढ़ाई करने का बेहतरीन हुनर होता था, तो उसकी तारीफ करने के लिए भी उसके पास केवल आस पड़ोस की महिला ही उपस्थित होती थी। यदि कोई महिला ने कभी अपने भावों को अभिव्यक्त किया होगा, तो वह भी किसी संदूक या अलमारी में बंद कागजों के रूप में दब कर रह गया। लेकिन पिछले एक दशक से इस इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। आज इस इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म केवल समय बिताने या मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं। ये अभिव्यक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े और दुनिया भर में गूंजने वाले मंच बन चुके हैं। जो पल कभी किसी जमाने में डायरी के पन्ने हुआ करते थे, वो आज व्लॉग बन गए हैं और घर आंगन की कलाएं ग्लोबल ई कॉमर्स का हिस्सा बन गई है। जब हम शिक्षा, शोध और अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस बदलाव का विश्लेषण करते हैं, तो एक बेहद सुखद तस्वीर उभर कर सामने आती है। इस बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव आज जो सोशल मीडिया ने किया है, वह है आर्थिक आजादी का लोकतंत्रीकरण। आज महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी बड़े शोरूम, भारी निवेश या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आज स्मार्टफोन का कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन ही उन महिलाओं का ऑफिस है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक मंच का हिस्सा बन रही है। आप आज सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम पर नजर डालिए, महिला आपको अपनी योग्यता से अपने काम को बखूबी करती नजर आएंगी। चाहे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई का काम हो या रसोई में बनने वाले व्यंजनों की रेसिपीज का काम हो, बिस्किट बेकरी का काम हो या हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अथवा कपड़े का काम हो, ऐसे ही विभिन्न कौशलों के माध्यम से आज महिला अपने काम में लगी हुई है। ऐसे ही राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक महिला की हम बात करें, तो हम पाएंगे उस महिला ने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से सोशल मीडिया के माध्यम से मुकाम पाया है। वो केवल घर की चार दीवारी में कैद रहकर कभी नहीं पाया जा सकता था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी जी की, जिन्होंने हस्त कौशल के कार्य में न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने आसपास की बेरोजगार अनेक महिलाओं को भी काम देकर उनके घर में एक आर्थिक संबल प्रदान किया है। ऐसे ही राजस्थान के जोधपुर जिले की ग्रामीण अंचल की महिला कौशल्या जी चौधरी की हम बात करें, तो वो भी मसालों के उत्पादन का काम वर्तमान में अपनी मेहनत और लगन से करके महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इन्होंने भी अपने काम की शुरुआत शून्य स्तर से की थी। घर की छोटी सी रसोई में खाना बनाने की विभिन्न विधियों को मोबाइल से रिकॉर्ड करती और अपलोड करती। धीरे धीरे कब उनका काम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, ये बात स्वयं उनको भी नहीं पता थी। आज वे इस प्लेटफॉर्म से अपना ही नहीं बल्कि अन्य कामकाजी महिलाओं का घर चलाने में सहारा बन चुकी है। ये तो केवल एक दो उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं, जबकि वर्तमान में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को लोगों के सामने लाकर अपनी एक अलग पहचान बना रही है। वो बीता हुआ समय था जब सब कुछ घर में कैद हो गया, परंतु अब समय बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है। अब आप सोशल मीडिया के सहारे अपनी कला को देश ही नहीं वरन विदेश तक भी पहुंचा सकते हैं और साथ ही घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। पिछले एक दशक में इस इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया ने सामाजिक दृश्यों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आजकल लोग यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं को भी मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, जिनसे उन्हें बड़ी बड़ी सोशल साइट्स की कंपनियां अच्छा पैसा देती हैं और इससे पहचान मिलती है, वह अलग। आप कल्पना कीजिए बिहार के मधुबनी जिले की एक महिला की, जो अपनी पारंपरिक पेंटिंग सोशल मीडिया पर डालती है। वह पेंटिंग इतनी प्रचलित होती है कि कुछ ही दिनों में उसे दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क तक से ऑर्डर मिलने लगते हैं। या कल्पना कीजिए किसी ऐसी माँ की जिसने

बच्चों को खिलाने के लिए कोई खास और हेल्दी रेसिपी बनाई, उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया और देखते ही देखते उस वीडियो पर लाखों लोगों के व्यूज आए और अनगिनत लोग उस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। आज ग्रामीण अंचल की कोई महिला जब अपने हुनर का वीडियो इंटरनेट पर साझा करती है तो वह केवल लाइक्स या व्यूज नहीं बटोरती, बल्कि वह अपने जैसी हजारों अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाती है। वह साबित कर रही है कि टैलेंट किसी भी डिग्री या बड़े शहरों का मोहताज नहीं होता। सोशल मीडिया ने आज महिलाओं को नेटवर्किंग की वह असीम ताकत दी है जो पहले उनके पास किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं थी। पारंपरिक तौर पर महिलाओं का दायरा अक्सर घर, स्कूल या ऑफिस तक ही सीमित रहता था, लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया ने भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। आज छोटे से कस्बे की कोई युवा छात्रा जो भविष्य में वैज्ञानिक बनने का सपना पाल बैठी है, वह बिना किसी झिझक के नासा या इसरो के वैज्ञानिकों को फॉलो कर सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है और उनसे वैज्ञानिक बनने के सफर में आने वाली बाधाओं के बारे में जान सकती है तथा उनसे हर संभव मार्गदर्शन भी ले सकती है। इसके अलावा जागरूकता के क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रांति आई है वह अपने आप में अभूतपूर्व है, जो हमसे छिपी नहीं है। वर्तमान में महिला कार्यकर्ता मुश्किल विषयों पर बात कर रही है, चाहे वह कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता की बात हो या आर्थिक, शारीरिक स्वास्थ्य अथवा सामाजिक, सांस्कृतिक जागरूकता की बात हो या कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बात करने से समाज में या घर परिवार में अक्सर बचा जाता हो। महिलाएं आज खुलकर बात करने लगी है। आज इन विषयों पर महिलाएं वीडियो बना रही है, पॉडकास्ट कर रही है और लाखों महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर रही है तथा एक दूसरे का संबल बन रही है। सोशल मीडिया आज केवल जानकारी साझा नहीं कर रहा, बल्कि बहन चारा बनकर महिलाओं के बीच की कड़ी बन गया है। हमारे समाज में जाने अनजाने में महिलाओं के लिए कई तरह के सांचे या दायरे बना दिए गए थे, जैसे लड़कियों को ऐसा दिखना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए या यह काम महिलाओं का नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सोशल मीडिया पर आज की महिलाएं इन सभी रूढ़ियों अर्थात सांचों को तोड़कर आगे निकल चुकी है। वो साबित कर चुकी है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। वह हर समस्या अथवा चुनौती का सामना डटकर कर रही है तथा मेहनत और लगन से अपने मुकाम हासिल कर रही है। आप ऐसे में किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, खेल, चिकित्सा, इंडस्ट्री एरिया, फिल्म सिटी, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेती किसानी में ट्रैक्टर चलाने से लेकर सेना के फाइटर जेट उड़ाने तक, सब में महिला अपनी हर उपलब्धि को दुनिया के सामने रख रही है। श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि इस आभासी दुनिया की अपनी कुछ बेहद गंभीर चुनौतियां भी हैं। जब महिला सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी बात रखती है या सफलता की सीढ़ियां चढ़ती है तो अक्सर उसे पितृसत्तात्मक सोच और नकारात्मकता का सामना भी करना पड़ जाता है। ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, भद्दी टिप्पणियां और चरित्र हनन अक्सर उनकी सफलता में बाधा बनते हैं। यह एक कड़वा सत्य है जिससे महिलाएं हर रोज गुजरती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है महिलाओं का रेजिलियंस अर्थात गिरकर भी पुनः उठने की क्षमता। वे इन नकारात्मकताओं से डरकर कभी पीछे नहीं हटती, बल्कि और ज्यादा क्षमता के साथ ऊपर उठती है। वे साइबर सुरक्षा के बारे में सीख रही हैं और सकारात्मकता के साथ उठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में एक समाज के रूप में हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? सोशल मीडिया एक निर्जीव तकनीक है, यह अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से काम करने वाले लोग ही इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाएं। जब हम किसी महिला को ऑनलाइन कुछ अच्छा करते हुए देखें तो एक सकारात्मक कमेंट करने में, उनकी पोस्ट को शेयर करने में संकोच न करें। आपके द्वारा लिखा गया शानदार काम या हमें आप पर गर्व है जैसा एक छोटा सा कमेंट अथवा वाक्य भी किसी महिला का दिन बना सकता है।

सकता है और उसे अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का हौसला दे सकता है। हमें अपने घरों में लड़कों को यह सिखाना होगा कि जो सम्मान वे महिलाओं को वास्तविक जीवन में देते हैं, वही सम्मान और आदर सोशल मीडिया पर भी दें, जिससे सोशल मीडिया पर काम करने वाली महिलाओं को हौसला मिले और उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो कि वे कुछ अच्छा कर रही हैं। सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक ऐप नहीं है, यह एक औजार की तरह है और आज की महिलाओं ने यह बखूबी सीख लिया है कि इस औजार के माध्यम

0: वे कुछ अच्छा कर रही हैं। सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक ऐप नहीं है, यह एक औजार की तरह है और आज की महिलाओं ने यह बखूबी सीख लिया है कि इस औजार के माध्यम से कैसे अपनी सफलता और पहचान की इमारत को तराशना है और किस प्रकार सुनिश्चित करना है कि वे स्वाभिमान से सर उठाकर अपना काम करेंगी। वे अब केवल मूक अथवा अणबोल दर्शक नहीं है जो मंच के सामने बैठी ताली बजा रही है, बल्कि वे अब इस मंच की संचालक हैं। वे आज अपनी अपनी कहानी और किरदार की लेखिका स्वयं है। इंटरनेट की असीमित दुनिया में वे दुनिया को बता रही है कि उनकी पहचान केवल उनके कपड़ों या उनकी शक्ल सूरत से नहीं है, उनकी पहचान है उनके हुनर से, उनके विचारों से, उनके संघर्ष से, उनकी बेजोड़ कला और अथक प्रयास के साथ साथ कभी न हार मानने वाले उनके अदम्य साहस और आत्मविश्वास से। यही आत्मविश्वास, यही निडरता और महिलाओं की सकारात्मक पहचान एक सशक्त, प्रगतिशील और खूबसूरत समाज की सबसे मजबूत बुनियाद है। खूबसूरत समाज ही किसी भी देश का उज्जवल भविष्य साबित होता है। परिणाम स्वरूप यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने आज महिला को उसकी पहचान बनाने में जो सहारा दिया है वह अपने आप में अद्वितीय है।
1: नमस्कार किसान।
2: सोशल मीडिया और महिलाओं की सकारात्मक पहचान वार्ता हम सब ने सुनी। वार्ताकार थी नीतू बिश्नोई। और बहनों, अब बात करते हैं हमारे मानसून पर। बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और चारों ओर हरियाली हमारे मन को तरोताज़ा कर देती है, लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं, खासकर फैशन को लेकर। बारिश और नमी के बीच स्टाइलिश और कम्फर्ट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये मुश्किल आती है हम महिलाओं के सामने विशेष तौर पर। कारण ये कि हमें घर और बाहर दोनों जगह का काम देखना होता है, यानी ऑफिस, मार्केट या फिर आउटडोर गतिविधियों में हमें शामिल होना है, और इन गतिविधियों के लिए हमें कपड़े और जूते दोनों का जो चयन है हमें मौसम के हिसाब से ही करना होता है। बरसात में सही फैब्रिक और फुटवियर जो होते हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल हों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सही फैब्रिक है और हमारे फुटवियर हैं हमें आकर्षक तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हमें दिन भर आराम भी देते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा देते हैं। मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन फैशन और स्टाइल दोनों को बढ़ावा देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। हर मौसम में पहनावा चुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। अब जैसे मानसून का मौसम है तो ऐसे में हम नायलॉन फैब्रिक को चुनें, क्योंकि ये बहुत आरामदायक होता है, और ये जो कपड़ा है नायलॉन का, ये पानी को टिकने नहीं देता और बहुत जल्दी सूखता भी है। लेकिन बहनों, ध्यान रहे, जो ये कपड़ा है अगर ये गीला बहुत जल्दी होता है, इसके अलावा इस कपड़े को आप जब सिलवा रहे हैं तो बहुत अधिक टाइट ना सिलवाएं, क्योंकि स्किन फिटिंग जो होती है उससे अगर कोई भी वस्त्र आप पहनते हैं तो वो वस्त्र आपके पारदर्शी हो सकते हैं। इसके अलावा आप जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े पसंद करती हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी और आसानी से सूख जाते हैं। इसके अलावा जो इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही होगा कि कपड़ों का गीलापन जो है और पारदर्शिता, ये दोनों हमारे लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए फैब्रिक का जब भी आप चुनाव करें तो बहुत सोच समझ कर ही करें। इसलिए अगर आप कॉटन पसंद करती हैं तो आप कॉटन यानी सूती कपड़े पहन सकती हैं। बारिश के मौसम में नमी बहुत अधिक होती है, और हमें इस बात को भी देखना होगा कि जो सूती कपड़े हैं वो नमी को तो सोखते हैं लेकिन सूखते जल्दी से नहीं हैं, तो वो परेशानी भी हमें हो सकती है। बहनों, इस बात का भी हम ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में हल्के रंग अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम चटकीले रंग लें, और फ्लावर वाले प्रिंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे लुक को ताजगी देते हैं और हमें एनर्जी भी देते हैं। इसलिए हम पीला रंग, पिंक, फिर रेड या फिर ग्रीन कलर का चुनाव करें जो हम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बहनों, मौसम के अनुसार हम कलर पहनते हैं और फ्लावर वाले प्रिंट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो हमारे लुक को तो अच्छा करता ही है, साथ ही साथ हमारे मूड को भी बहुत हल्का कर देता है, और मूड को

बहनों, बरसात के मौसम में फैब्रिक के साथ साथ हमें स्टिचिंग का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बरसात का मौसम है तो टखने यानी एंकल तक की पैंट और शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगती है और हम पानी में भीगने से बचते हैं, यानी हमारे कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी वस्त्र हम सिलवाएं वो ढीले वस्त्र हों, बहुत टाइट वस्त्र ना पहने, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन होता है और पसीना और नमी दोनों ही हमें महसूस नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे मौसम में फ्रॉक स्टाइल कुर्ती, कॉर्ड सेट और फुल लेंथ की बजाय थोड़े से छोटे कपड़े अच्छे लगते हैं और बारिश में अधिक भीगते भी नहीं हैं। इसके अलावा बहनों, जब भी बरसात का मौसम होता है तो आप ऐसे मौसम में अपने साथ एक जो भी ड्रेस आपने पहनी है, एक मैचिंग या फिर कलरफुल स्कार्फ या दुपट्टा अपने साथ जरूर रखें। ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहनों, गीली सड़कों और फिसलन से बचने के लिए हमें सही फुटवियर पहनना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सही फुटवियर है हमें सुरक्षा भी देता है और आरामदायक भी हमें बनाता है। जैसे जेली फ्लैट्स हैं और रेन बूट्स बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और ऐसे मौसम में हम ग्रिप वाली सैंडल भी पहन सकते हैं। और ध्यान रहे, ऐसे मौसम में ऊंची हील वाली सैंडल जूतों से पहनने से बचें। इसके अलावा हम अपने पास वाटरप्रूफ बैग जरूर रखें। और बरसात का मौसम है, हमें किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हम किसी भी धातु की बजाय प्लास्टिक वाली ज्वेलरी पहनें ताकि वो नमी में ख़राब ना हो। इसके अलावा हल्के और आसानी से फोल्ड होने वाले रेनकोट को भी अपने साथ रखें, ताकि कभी अचानक बरसात आ जाती है तो हम भीगने से बच सकें। इसके अलावा बहनों, एक बहुत अच्छी बात तो ये रहेगी कि हम अपने जो भी भारी कपड़े हैं वो इन दिनों में तो अपनी अलमारी में सहेज कर रख दें और हल्के फुल्के वस्त्र पहनें और इस मौसम का भरपूर आनंद लें। और अब प्यारा सा गीत।

बहनों, सावन ये शब्द सुनते ही मन झूम उठता है। कभी मन करता है कि बच्चों की तरह बारिश में भीग लें, तो कभी सावन में बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मन व्याकुल हो जाता है। सावन का मौसम आता है जब, तो घर में बहुत से व्यंजन बनते हैं जो हमारे पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं और ये बेहद पौष्टिक भी होते हैं। सावन में अक्सर घरों में साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, राजगिरी, इन सब का सेवन अधिक किया जाता है और इनके आटे से रोटी, पूरी, कढ़ी और पकौड़े तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ घेवर, अनरसा और कुट्टू का चीला। और बहनों, सावन के महीने में तीज आती है और तीज के सत्तू का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ ही जाता है। अब सावन का महीना जब आ गया है तो क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। तो बहनों, कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं जो हम डिफरेंट फ्लेवर के साथ तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं साबूदाना उत्पम की। तो ये पारंपरिक साउथ इंडियन डिश है जिसे सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसे बनाना बेहद आसान है। आप चाहें तो इसे व्रत में भी तैयार कर सकते हैं। बस करना आपको ये है कि इसके बैटर को आपने साबूदाने के आटे से तैयार करना है, और यदि आप साबूदाना पसंद नहीं करते हैं तो किसी भी अन्य आटे से, जैसे सामक का आटा है, राजगिरी का आटा, इससे भी बैटर को तैयार कर सकते हैं। और फिलिंग के लिए आप इसमें शकरकंद डाल सकते हैं। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर होता है। इसी तरह से आप साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं और कुट्टू की जो पूरी या फिर चीला बना सकते हैं, जिसका स्वाद बेहद अच्छा होता है। और पौष्टिक आप खाना चाहते हैं, कुछ मीठा खाना चाहते हैं, तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं। और चटपटा और नमकीन खाने के शौकीन हैं तो इन्हीं मखानों से आप मखाना करी भी तैयार कर सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, पौष्टिक भी होती है। इसी तरह से लौकी चना दाल तैयार करना बेहद आसान है और बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है और पौष्टिकता से भरपूर होती है। और जो जो सत्तू हैं जो तीज पर बनाए जाते हैं, इन्हें बनाना बेहद आसान होता है, पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। और ये चना दाल के, चावल के या फिर गेहूं के आटे से आप तैयार कर सकते हैं। इन्हें बनाना बहनों इसलिए आसान है क्योंकि आजकल हमें मार्केट में जो चना का आटा है वो बिल्कुल तैयार मिलता है, और उसके बाद हमें घी को गर्म करके इसमें मिक्स करना होता है, और जब थोड़ा ये ठंडा हो जाता है, अब ये बंधने लायक हो जाता है, तो इसे मतलब सत्तू के आकार में इसे बांध सकते हैं।

हैं और फिर इसे ड्राई फ्रूट से सजाकर, केसर से सजाकर आप किसी को भी परोस सकते हैं और खुद भी इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो बहनों, अब प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: mutual agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of the society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that they have taken a pledge for Nasha Mukt Bharat.
2: Today, under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan organized by Prime Minister Shri Narendra Modi, I, along with my friend and fellow students, have taken a pledge

0: ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त

0: खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी हैं। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है ज्योति बनी ज्वाला। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी को। फिल्म का नाम है हम। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में तोहफा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत बप्पी लहरी का।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 3 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के उसूल की जम्त आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन कुआत्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियोटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को इमरजेंसी बातचीत का एहतमाम करेगी। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की सम्त आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार

करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इसके आगाज के साथ साथ मनुष्यात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि माशरे से मनुष्यात के खात्मे के लिए बेदारी को फरोग देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लानत से लोग अपने मकासद और अपने ख्वाब पूरा करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुनबे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमज़ोर होती है। वजीर आजम ने नौजवानों को मनुष्यात की लानत से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमिरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार कैरियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है। वजीर आजम ने कुनबों पर जोर दिया कि वो माशरे में बदनामी के डर से मनुष्यात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुनबों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि कुनबों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मनुष्यात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मकामात से 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शरका के साथ साथ माई भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले ख़त्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज़ मैगजीन में शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस से तलब करके भारत को मुर्द इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। पाकिस्तान में बलोच शहरियों की जबरी गुमशुदगी के सिलसिले में बढ़ती हुई तश्वीश के दौरान इंसानी हकूक से मुतालिक एक सरकर्दा तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि मजीद 5 बलोच शहरियों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरी तौर पर लापता कर दिया है। बलोच नेशनल मूवमेंट के इंसानी हकूक से मुतालिक शोबे पांग के मुताबिक मुतालिक बलोच शहरियों को मुबैना तौर पर इंसानी दहशतगर्दी के महकमे, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौजी एहलकारों ने हिरासत में लिया है। पांग ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर लापता अफराद की हालत और जगह के बारे में मुतला करें और उनके तहफ़ को यकीनी बनाएं और इस मामले की फौरी गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीक़ात करके जिम्मेदार अफराद को जवाबदेह ठहराएं। तंजीम का कहना है कि जबरी गुमशदगियों का यह सिलसिला पाकिस्तान की बैन अलाक़वामी इंसानी हकूक़ से मुतालिक जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है और इसकी वजह से मुतासर कुनबे तवील अरसे से शदीद तौर पर ज़हनी अज़ियत का सामना कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदोव बख्तियार आदिलोविच आज से इस माह की 5 तारीख तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान जनाब आदिलोविच राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। उनका दिल्ली में एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करने का प्रोग्राम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक मुजवजा समझौते में आप नए हुरमुज को पूरी तरह बिला ताखिर खोलना और ईरान के एटमी खतरे को दूर करना शामिल होगा। उधर ईरान ने अमरीकी सदर के दावों की बाजाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं की है। यूरोपीय यूनियन, स्पेन और कुछ रुकन मुल्कों के दरमियान तनाजे के बाद मंगल को सुएटा में माइग्रेशन बहरान से निपटने के लिए हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी। मराकश से स्पेन के इलाके में 60,000 तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद यूरोपीय यूनियन के 22 मुल्कों ने एक मजबूत रद्दअमल और मजबूत बैरूनी सरहदी कंट्रोल का मुतालबा किया है। स्पेन ने इटली की जानिब से अपने मुल्क के साथ यूरोपीय यूनियन की खुली सरहद के इंतजाम को मुअत्तल किए जाने के बाद इसकी तनकीद करते हुए इसे कुछ यूरोपीय हुकूमतों की तरफ से इख्तलाफ राय को बढ़ावा देने वाला रद्दअमल करार दिया है। इटली के इस इकदाम को फिनलैंड और डेनमार्क की हिमायत भी हासिल थी। हुकाम ने बताया कि 30 जुलाई को सियोटा में दाखिल होने वाले तकरीबन तमाम तारिकीन वतन वापस हो चुके हैं, जबकि क्रॉसिंग के दौरान कम से कम 67 अफराद हलाक हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने खबरदार किया है कि लोगों की बेकाबू माइग्रेशन ब्लॉक की मुश्तरका माइग्रेशन पॉलिसी पर एतमाद को नुकसान पहुंचा सकती है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने खवातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की छठे नंबर की खिलाड़ी लिग्युन थ्यू लिन को 21-16 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा तन्वी 2008 में साइना नेहवाल के बाद से ये टाइटल हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून भी हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मकाम पर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के उसूल की सम्त आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। और आज का दिन तो ख़ास है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको दोस्त कहा, दोस्त कहकर मुखातिब हुए, आप समझ ही गए होंगे, हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती की जानिब। जनाब आज दोस्ती का आलमी दिन है। और वैसे दोस्ती जैसे रिश्ते को निभाने के लिए किसी ख़ास दिन को मनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्त तो एक ऐसा साया है जो आपके साथ हमेशा रहता है, और यूँ कहें कि साये से बढ़कर भी है। साया भी कभी कभी आपका साथ छोड़ जाता है, लेकिन दोस्त कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। वक्त चाहे कैसा ही हो, ज़िंदगी में कितने ही नशेब व फराज हों, लेकिन सच्चा दोस्त कभी आपसे अलग नहीं होता। आज दूर बैठा एक दोस्त बहुत याद आया, अच्छा गुजरा हुआ कुछ वक्त बहुत याद आया, जो मेरे दर्द को सीने से लगाता था, आज जब दर्द हुआ तो वो दोस्त

सोना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना, दरिया की सोना सोना।

बहुत सारे दोस्त होते हैं यूँ तो, लेकिन अगर एक भी अच्छा दोस्त मिल जाए तो सब दोस्तों की कमी दूर हो जाती है। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है।

दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत और इतना मजबूत क्यों कहलाता है? कई बार खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ जाता है। उसकी वजह यह है, पल में रूठ जाते हैं, पल में मन जाते हैं, और यही जो सिफत है वो सब पर भारी है। हाथ मिलाते हैं जब दोस्ती, हाथ मिलाते हैं जब दोस्त वफा के साथ, दूर हो जाते हैं सब गम हवा के साथ।

आज के मेरी पसंद प्रोग्राम हमने खराजे तहसीन के तौर पर पेश किया दोस्ती के रिश्ते को। ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी हैं। सफ़ेद खून, आगा हश्र कश्मीरी के तहरीर करदा ड्रामे के रेडियो रूप का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।

0: आखिर कमबख्तों ने अपने बाप को पागल बना दिया। खैर बैरम, खुदा का कहर जारा की शक्ल में आया है, वही इनसे पूरा इंतकाम लेगी।
1: लेकिन अब्बा, बादशाह सलामत अब कहाँ है?
0: कले में, मैंने जारा के पास भिजवा दिया है। देखो बैरम, हम पर बादशाह का हक है, और वो हक इस तरह अदा हो सकता है कि हम, तुम और जो भी ये हक अदा करना चाहते हैं वो सब मिलकर जारा और उसके शौहर की मदद करें।
1: अच्छा, उन्होंने अपनी फौज का सिपे सलार किसको बनाया है?
0: एक तो तुम हो और दूसरा
1: तुर्रम।
0: बैरम, तुम तो मेरे बेटे हो, इसलिए वही करोगे जो बाप की मर्जी होगी। अब बाकी रहा तुर्रम, उसे तुम मेरा ये खत ले जाकर दिखा दो।
1: अब ये खत हर्फ बहर्फ माह पारा और दिलारा को जाकर सुनाता हूं। चल बैरम चल, इसी तरह बूढ़ों की बेवकूफी से जवान अक्लमंदों का फायदा होता है। चल, चल।

0: हमें नहीं जानता, हमें नहीं पहचानता, हम बादशाह हैं, बादशाह।
1: अफसोस अरसलान, गरीब शहंशाह फिर जुनून के जोश में कन्हे से बाहर निकल आया। खुदा उन जालिमों को भी यूं ही बर्बाद करे।
0: मैंने ये आवाज कहीं सुनी है, मैंने तुमको और इनको कहीं देखा है।
1: हुजूर, मैं आपका गुलाम सदान हूँ और ये अरसलान हैं।
2: सदान, ऐसी हालत में तो एक गरीब शख्स को भी नहीं देखा जा सकता।
1: हाँ अरसलान, अब मेरी आंखें आंसू बनकर बह जाएंगी।
0: तू रोता है? अगर तुझे हमारी किस्मत पर रोना है तो हमारी आंखें ले और सब्र कर। हम भी जब इस तमाशगाह में आए थे तो यूं ही रोया करते थे।
1: हाय हाय, कैसी अच्छी तबीयत बर्बाद हो गई।
0: यही है सिपाही, यही है सिपाहियों, सिपाहियों यही है। इसे पकड़ लो, इसको पकड़ लो। इसका नाम महापारा है, महापारा। अरे इसने अपने बाप को ठोकरों से मारा है। वो दूसरी भी आई, इसका नाम दिलारा है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल से इसकी तबीयत की बुराई आश्कारा है। क्या वो भी भाग गई?
2: गूंज से थे जिनके दंतों से जमीन और आसमान, चुप पड़े हैं कब्र में अब वो। ना हूं ना हां,
0: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इंसाफ को रुपयों ने खरीद लिया है, हाकिमों को रिश्वत दी गई है, रिश्वत। ओ, तुम सब डाकू हो, तुम सब दगाबाज हो, दगाबाज हो, दगाबाज हो।
3: ये है, संभाल लो इन्हें, ले चलो किले में।
0: छोड़ दो। अरे कोई बचाने वाला नहीं।
4: अरे आइए,
0: कोई मेरे हाथ पर तरस खाने वाला नहीं।
3: अब्बा हुजूर, मैं जारा हूँ, आप किले में तशरीफ ले चलिए, बंदी आपकी खिदमत करेगी।
0: मुझे मत छेड़ो, मैं एक बेवकूफ बूढ़ा शख्स हूँ, मुझ पर हंसना नहीं, नहीं हंसना। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी जारा है।
3: जी हाँ, मैं वही हूँ, ये मेरे शौहर हैं। आप मुझे दुआ दीजिए अब्बा जान।
2: लाइए लाइए, मैं हाथ को बोसा दूँ।
0: इसे धो डालो, इसमें फला की बू आती है, इसमें फला की बू आती है। अरे तुम पीछे हटे नहीं? ओ बेवकूफ हो, हम लड़कर मर जाएंगे मगर तुम्हारी गुलाबी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
3: अफसोस, औलाद की

0: बाप की तबीयत किस कदर बदल दी।
1: जारा, ऐसी हालत में अच्छे इंसान का पागल हो जाना कुछ ताज्जुब नहीं है।
2: हुजूर, अब इनकी ऐसी निगरानी कीजिए कि किले से बाहर ना आने पाए। जब से आपने इस सरहदी किले पर कब्जा किया है, उस वक्त से दुश्मन के सिपाही चारों तरफ फिरा करते हैं।
3: अब तो वो एक इंच जमीन भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। मुझे तो बस अपनी बाकी फौज का इंतजार है। फिर ये किला तो क्या, इनको अपने बचे हुए मुल्क का बचाना भी दुश्वार है।
4: खुदा आपको फतेह हासिल करे।
0: आमीन, वो जरूर करेगा, क्योंकि ये मेरा प्यारा शौहर हिस्स व हवस से गैर मुल्क हमला करने नहीं आया, बल्कि मेरी मोहब्बत में आया है
3: और इंसानियत का फर्ज मुझे यहाँ खींच लाया।
4: खुदावंद, तू हक है और हक का साथ दे। आमीन।

0: नहीं छूट सकता।
1: सिपाहियों, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना।
0: वो नहीं सुन सकते।
1: मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इन दोनों औरतों को कैद कर लो।
0: और मैं भी हुक्म देती हूँ कि अकरम का सर काट लो।
1: सिपाहियों आगे मत बढ़ो। सिपाहियों बदमाशों!
2: ऐ खुदा, ये क्या हो रहा है?

0: Wah. मौसी की भी क्या उम्दा है। इसे सुनकर तबीयत बहल जाती है, मगर मेरा दिल तो उस वक्त खुश होगा जब मेरे सर पर खाकान का ताज होगा और इस हाथ में सल्तनत की बागडोर होगी। अगर मेरा आज का सोचा हुआ दांव चल गया तो ये सब कुछ भी बहुत जल्द हाथ आ जाएगा।
1: क्यों बैरम?
0: कौन? ओ, हुजूर हैं।
1: बैरम, तुमने फिर वही अदा दिखाई। देखो, अगर तुम मुझको हुजूर कहकर पुकारते रहे तो मैं ऐसी मोहब्बत से बाज आई।
0: क्यों प्यारी माह पारा, क्या तहजीब से बात करना भी कोई बुराई है?
1: तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरी इज्जत है, मोहब्बत नहीं।
0: नहीं माँ पारा, इज्जत और मोहब्बत दोनों।
1: जी हाँ, अगर सारा दिल ही मेरी मोहब्बत में वक्फ कर दिया होता तो दिलारा की मोहब्बत को कहाँ रखते।
0: प्यारी माँ पारा, तुम्हारा दिल कितना बदगुमान है, मगर मैंने कल जो बात कही थी कुछ उसका भी ध्यान है?
1: हाँ बैरम, मैं तमाम रात सोचती रही मगर मुझे कोई तजवीज नजर नहीं आई। कुछ तुम ही बताओ।
0: तो सुनो, खाकान और जारा का कत्ल करा दो।
1: लेकिन शायद दिलारा इसके खिलाफ हूँ।
0: हो क्या, अरे वो तो है ही। देखो प्यारी, अगर तुम ये चाहती हो कि इस सल्तनत का तुम्हारे सिवा कोई हकदार ना हो तो एक तदबीर करो।
1: वो क्या?
0: देखो, रैयत समझती है कि खाकान और जारा पर बहुत जुल्म हुए, इसीलिए लोग बलवा कर उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। अगर वो दोनों आजाद हुए तो ये सर और ताज दोनों जाते रहेंगे। इसलिए मैं आज दो कातिलों को भेजकर खाकान का कत्ल करा दूंगा।
1: इसके बाद
0: तुम कैदखाने में जाकर जारा का अपने हाथ से कत्ल कर देना और जारा के कत्ल का इल्जाम दिलारा पर लगा देना। सोचो मत। देखो, ऐसा करने से खाकान मेरे हाथ से, जारा तुम्हारे हाथ से और दिलारा बागी रियाया के हाथ से शहीद होगी और फिर हमारे लिए हमेशा की ईद होगी।
1: अच्छा, तो मैं जाती हूँ।
0: ऐ मेरे दिल की रोशनी।
1: ओ बैरम, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, जाती हूँ। बहुत खूब, लैला मजनू की जोड़ी जा रही है। क्यों बैरम, अब तो खूब मुलाकातें होती हैं, घुल मिल के बातें होती हैं।
0: दिलारा, अब क्या खाक बातें होती हैं, जाने भी दो दिलारा।
1: क्यों, खैर तो है।
0: है मेरी प्यारी दिलारा, शायद जमाने का खून सफेद हो गया है या इन सितारों का कुछ उल्टा फेर हो गया है।
1: है? ऐसा भयानक मजमून?
0: खून, खून प्यारी दिलारा, तुम्हारा खून।
1: मेरा खून? सबब
0: दिलारा, ये तो सबको मालूम है कि रैयत समझती है कि खाकान और जारा पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं, इसलिए रैयत बलवा कर उन्हें छुड़ाना चाहती है।
1: फिर?
0: इसलिए महापारा को ये यकीन हो गया है कि अगर वो दोनों कैद से छूटे तो ये सर और ताज दोनों जाते रहेंगे। इसलिए महापारा आज ही रात को खाकान को दो कातिलों से कत्ल कराएगी और तब जारा को अपने हाथ से खाक

0: को खून में मिलाएगी और उसके कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाएगी।
1: इस कदर नियत में फितूर?
0: हाँ प्यारी दिलारा, अब तो तुम समझ गई होगी कि इसका मतलब क्या है।
1: यही कि खाकान को कातिलों के हाथ से और जारा को अपने हाथ से और मुझे बागी रैयत के हाथों से मरवा दिया जाए
0: और खुद ताज और तख्त की मालिक बन जाए। मगर तुम उस नागिन को डसने का मौका ही क्यों दो?
1: तो क्या करूं?
0: क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त महापारा की छुरी जारा के खून में डूब चुकी हो तो फौरन तुम वहां पहुंच जाओ और शोर करके उसे गिरफ्तार करवा दो?
1: लेकिन अकेली मैं?
0: फिक्र मत करो, आज रात जितनी मदद मुझसे हो सकेगी मैं करूंगा और कल सुबह तुम्हें इस मुल्क की अकेली मलिका बनने की मुबारकबाद देने सबसे पहले मैं ही आऊंगा कब्रिस्तान में।
1: ठीक है तो मैं जाती हूँ और उसकी टोह लगाती हूँ।
0: हाँ जरूर। वाह मियां बैरम वाह, इन सयानी डायनों को शीशे में उतारना यारों ही का काम है। वाह पैरम, महापारा ताकत और जोश में दिलारा से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब ये भूतनी उस चुड़ैल से लिपटेगी तो उसके एक ही वार में इसका बेड़ा पार होगा। फिर जो भी बाकी रहा वो सुबह मेरे तमंचे का शिकार होगा। फिर बंदा अकेले ही इस मुल्क का मालिको मुख्तार होगा।

0: क्या नींद में?
1: कौन कौन हो तुम?
2: शोर मत मचाओ।
1: क्या चाहते हो तुम?
2: दो आदमियों के लिबास में एक शख्स की मौत।
1: मौत किसकी?
0: तुम्हारे अब्बा की।
1: क्यों? इनका कसूर, इनका गुनाह?
2: कोई नहीं।
1: क्या इसीलिए कत्ल करते हो कि ये बेकसूर हैं?
2: चुप हो जाओ। हम इन्हें एक तड़पती हुई लाश देखना चाहते हैं।
1: इस गरीब को तुमने कत्ल भी किया तो क्या पाओगे? मेरे भाइयों, मैं एक शहजादी होकर तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बाप की जिंदगी बख्श दो।
0: बस चुप रहो।
2: उठाओ बूढ़े को। हाँ, ले चलो यहाँ से।
1: नहीं।
3: कौन है? नहीं। कौन है? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मेरी धारा को छोड़ दो, वरना मैं दांतों से।
1: हाय हाय जालिम, वो क्या करते हो? खुदा के लिए मेरे अब्बा पर तरस खाओ, खुदा के लिए तरस खाओ।
2: चल चल चल
3: चल, छोड़ दो, ना दो, ना बुरा दो। मैं तुम्हारा शहंशाह हूँ।
0: अरे शहंशाह थे, अब नहीं हो।
2: थोड़ी देर बाद तुम कुछ नहीं रहोगे, समझे? लाश में तब्दील हो जाओगे। खबरदार,
4: खबरदार। शहंशाह के साथ ये सलूक करने से पहले तुम्हें मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। आओ, आओ सामने आओ।
2: अरे आओ। अरे ये तो शहजादी जारा का शौर है।
0: हाँ हाँ,
2: बेकार जान गंवाने से क्या फायदा? हमारी रकम तो हमें मिल गई।
4: अरे भाग कर कहाँ जा रहे हो? हिम्मत तो सामना करो, ठहरो, रुक जाओ। भाग गए बुजदिल। चलिए शहंशाह, शाही दरबार आपका इंतजार कर रहा है।
3: मैं शहंशाह? शाही दरबार? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। ए नेक दिल नौजवान, तुम कौन हो?
4: शहंशाह, मैं आपकी छोटी बेटी जारा का शौहर हूँ। आइए मेरे साथ आइए शहंशाह, आइए।
3: चलो चलो नौजवान, चलो।

0: कोई न बचाएगा।
1: कौन? महापारा, मेरी अच्छी बहन, दौड़ दौड़, वरना वो बेचारा गरीब जल्लादों के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा।
0: कौन गरीब, कौन बेचारा?
1: अरे क्या तू नहीं जानती, वही गरीब जिसकी बदौलत आज तू शहजादी कहलाती है।
0: क्या तेरा बाप?
1: मेरा बाप? तो क्या वो तेरा बाप नहीं? क्या तू उसके गोश्त और लहू से पैदा नहीं हुई?
0: बस खामोश, न जबान काट ली जाएगी।
1: तू जबान काट लेगी तो मैं लोगों को आंख के इशारे से सारी बात बताऊंगी,
0: वो भी फोड़ दी जाएंगी।
1: तो मैं अपना सर उस गरीब के लिए तेरे कदमों पर झुकाऊंगी,
0: वो भी अलायदा कर दिया जाएगा।
1: रहम रहम जल्लाद रहम, ओ खुदा।
0: बस हो चुका, अब सर झुका, मैं खंजर निकालती हूँ। ये कैसी आवाज, कोई अंदर तो नहीं छुपा हुआ है? देख क्या,
1: हाय हाय, कोई तरस खाने वाला नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? महापारा तो गई, मैं कहीं छिप जाऊं। हाँ उधर छिप जाती हूँ, उधर छिप जाती हूँ।
2: प्यारे बैगम, जारा का पलंग तो खाली है, कहाँ है जारा और कहाँ है महापारा?
3: अब शायद महापारा जारा को कत्ल करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई हो। मैं देखता हूँ, तुम यहीं ठहरो।
2: मैं यहीं ठहरती हूँ, थोड़ी देर पलंग पर लेट जाऊं। कितना सुकून है।
0: कोई नहीं था, मुझे वहम हुआ तो जारा पलंग पर सो गई। ठीक है, अब मैं अपना काम करूं। ले एक नापाक खस कम जहां पाक।
1: बहन ने बहन का खून किया, नहीं देख सकती
0: है? ये कौन थी जारा, और पलंग पर कौन? दिलारा,
1: ये मैंने क्या किया?
0: मैं क्या चाहती थी दिलारा?
1: जारा का खून बहा है और उसका इल्जाम मुझ पर लगा।
0: दिलारा, तू धोखा खाती है।
3: गजब, ये क्या हो रहा है?
1: नहीं महापारा, धोखा नहीं, ये बहरम भी यहाँ है। बहरम खामोश क्यों?
0: क्या बैरम? तो क्या ये सब बैरम ने कहा?
3: ये कमबख्त तो सब कुछ कह देगी, फौरन यहाँ से भागना चाहिए।
0: ठहर शैतान बैरम, भागता कहाँ है? दो जखी कुत्ते, अपनी नापाक हरकत का इनाम तो ले जा।
3: मार डालो, लेकिन महापारा तू भी नहीं बच सकती, तू भी अपने गुनाहों का इनाम ले। ये ले।

0: भेड़िए आए हैं और उनको पकड़ कर ले गए हैं। आसमान सुन रहा था, ये जमीन देख रही थी, मगर किसी ने तरस न खाया, किसी ने उनको न बचाया।
1: जारा,

0: अब्बा जान, कदम रंजा फरमाइए। ये ताज और तख्त जो मुद्दत से आपके कदमों से महरूम हो गया था, इसे फिर दोबारा मुबारक बनाइए।
1: बस ए मेरे खून के सबसे ज्यादा पाक कतरे, अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत सुलाकर उस बादशाहों के बादशाह के दरबार में ले जाएगी।
0: अब्बा जान,
1: बाप की जान कुर्बान,

0: गौर करके देख बेटी, ये वही हाथ हैं जिन्होंने मगरूर होकर तेरा हक छीना था। अब इसके इंसाफ को देख, इन्हीं हाथों से तेरा हक तुझे वापस दिलाता है।
1: यूं पाते हैं एजाज जो करते हैं अमन नेक।
0: मेरे शरीफ दोस्त सरसलाज, तुमने जो मेरी खिदमत की है उसका शुक्रिया मैं जबान से अदा नहीं कर सकता।
1: इस गुलाम को बार बार क्यों शर्मिंदा करते हैं? सच्ची हमदर्दी और हमेशा याद रखने वाली वफादारी वो थी जो शरीफ सैदान ने दिखाई।
0: हाँ, मेरा बावफा सादान, शहीद जफा सादान, जोहाक ना फिराउन ना शद्दाद ने किया, वो तुझ पर और मुझ पर मेरी औलाद ने किया। सीने में हो गया है दिल ना उम्मीदे खून, देखा तो क्या सुना भी ना था ऐसा सफेद खून।
2: अब्बा जान, जो खुदा को मंजूर था उसका होना जरूर था।
0: बेटी बजा फरमाती हो, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक मरतबा दोबारा मेरे सामने हाथ मिलाओ। अहले जमी पे सूरते मेरे फलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो।
2: आमीन।

0: सफेद खून नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप स्वर्गीय आगा हश्र कश्मीरी के मंच नाटक का श्री सत्येंद्र शरत द्वारा किया रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कीमती आनंद, बीएल टंडन, योगेंद्र टिक्कू, माला कुमार, गीता वर्मा, मंगत राम, कमल साथी, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राकेश कुमार शर्मा और शारदा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रेडेज पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज़ लैला मजनू फिल्म के नगमे से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मौसीकी जयदेव की।

0: हम दोनों फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा निगार थे साहिल लुधियानवी और मौसीकी तरतीब दी थी जयदेव ने। जयदेव की ही मौसीकी में एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं। आवाज़ें हैं रूना लैला और भूपेंद्र की। फिल्म है घरौंदा, नगमा निगार गुलजार।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में। नगमा निगार थे जा निसार अख्तर, मौसीकी तरतीब दी थी जयदेव ने। और लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है किनारे किनारे।

मुझे जीने दो। इस फिल्म का नामा सुनिए, आशा भोसले का गाया हुआ, जयदेव की मौसीकी।

लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए रमेश शास्त्री का लिखा हुआ नगमा, बरसात फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज़ में, मौसीकार हैं शंकर जयकिशन।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका रविवार के इस अंक में, जिसमें हम बात करेंगे मित्रता दिवस की। साथियों, आज रविवार है, जिसका इंतजार हम सभी को रहता है, क्योंकि आज से हर रविवार को प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें आप हमें पत्र भेजते हैं और हम आपकी फरमाइश पर आपको आपकी पसंद के गीत भी सुनवाते हैं। तो साथियों, आज के इस युववाणी कार्यक्रम में हमें पहला पत्र भेजा है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभीहा, अनस और रेहान ने। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर, गुरमन सिंह, आदर्शपाल सिंह और रोबिन सिंह जोसन ने। 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। दरियापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले ने। गंज ढुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राज सिंह और प्रीत मान ने। जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाहा, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर

दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन में परिवार के बाद यदि कोई रिश्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तो वो मित्रता का रिश्ता होता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। वो हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारी गलतियों को सुधारने में भी मदद करता है और हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। इसी अनमोल रिश्ते का सम्मान करने के लिए हर वर्ष मित्रता दिवस मनाया जाता है। ये दिन मित्रों के प्रति प्रेम, विश्वास, सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। श्रोताओं, मित्रता दिवस हर वर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन ये मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक अच्छा मित्र कठिन समय में हमारा मनोबल बढ़ाता है और सफलता के समय हमारी खुशी में शामिल होता है। मित्रता किसी जाति, धर्म, भाषा या देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती है। ये केवल विश्वास, ईमानदारी और अपनत्व पर आधारित होती है। मित्रों, सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे। वो हमारी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, जबकि खुश होता है। जब हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो हमें प्रेम पूर्वक सही राह दिखाता है। सच्चा मित्र कभी स्वार्थ नहीं रखता और हमेशा ईमानदारी और विश्वास का पालन करता है। इसीलिए कहा गया है कि सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। तो साथियों, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय हमारे अगले पत्र का है। अगला पत्र हमें भेजा है नागपुर, महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी ने। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदेई गांधी ने। फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी ने। बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर ने। गांव कलाना हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव, किरसन, हनुमान, केडूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा ने। 4 AM से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप ने। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल ने। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म बिन फेरे हम तेरे से, मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना की आवाज़ों में।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, संदीप सिंह, राजवेंद्र कौर, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह और मनराज विरक ने। विरम गांव से अजीत भावसार, प्रमीला, भावेश सनी और राकेश भावसार ने। श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाला, जॉनी बंसीवाला और धनराज बंसीवाला ने। केसरी सिंहपुर से श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार और चिमनलाल ने। गांव पजोनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया ने। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़ ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन द्वीवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, कुमारी प्रियाली और पार्थ हागोड़े ने। अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदनलाल शर्मा, महावीर लोहरा, पंकज कुमार, हर्ष, मनीष और राजेश कुमार ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने। लीजिए, आइए अब सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म स्वामी से।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी ने। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर ने। शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे और संगीता शिंदे ने। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप ने। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू और रजनी ने। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी और निवेश कुमार ने। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्ण जैन और राकेश जैन ने। भागसर शादुल शहर से मंगत राम धींगड़ा, सुमन, संजना और सचिन कुमार धींगड़ा ने। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।

दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रीतिक और बलवीर सिंह ने। गंज ढूंढवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका और विद्या देवी ने। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो और विनोद खां ने। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा,

अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, उमेश और मिथिलेश वर्मा ने। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म परवरिश है।

दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी ने। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव, विमल श्रीवास्तव, आशा और राधिका श्रीवास्तव ने। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने। रामसिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन और राजेश बब्बर ने। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, परबजोत मिशन और बेबी जानविका ने। जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा और कार्तिक सोनगरा ने। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म आंगन की कली से।

दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है गंज डुंडवारा से मास्टर किल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव ने। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने। गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर ने। 19 जीडी से गुरतेज ओलख ने। लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म छाया से।

दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह ने। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत कौर मन्नू ने। गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने। धनोरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयन बाबू ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढुकिया और इवा धारणिया ने। असम से हितेंद्र दास ने। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। लीजिए, अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म अनुराग से।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म दुनिया का ये गीत हमारे सभी श्रोताओं के लिए।

दोस्तों, यदि आप भी हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है आपकी पसंद युववाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कॉटन सिटी सूरतगढ़, पिन कोड 335804। आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो श्रोताओं, इसी बातचीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल संध्या 7 बजे। जानकारी दी जाएगी नरमा कपास में कीट नियंत्रण, सुअर पालन, बच्चों और पशुओं को रखें जल भराव से दूर और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी आप तक प्रेषित की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत और भजन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। सुगम संगीत में कुछ गज़लें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम ये सुनेंगे आप रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवार संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45। सुप्रभात यह कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। रामचरितमानस का सहस्वर पाठ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। किसानों के लिए उनका कार्यक्रम खेतिया नवास्ते होगा सुबह 7:10 पर। और इसके अलावा किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेत खलिहान दोपहर 12:50 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत होगा सुबह 11:00। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00 से 11:00 तक। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा दोपहर 12:05 से 12:30 तक। और सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 12:30। महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर। युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:00। और चौपाल का समय रहेगा संध्या 7:00। ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बज चुके हैं, क्षमा करें, संध्या के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सराय की भाषा का कार्यक्रम सुनिए।

0: वार त मैं आंगणे च वंज के खड़ा थी वेंदा ही इंतजार च कि शायद मेरे को पहचान वो वल पोवे। चिड़िया का झुंड जिथे भी देखता हाँ मेरे को लगता है कि मेरी चिड़ी इसी झुंडे चीज हो सी ते मेरे को देख हुणे ही उड़ के मेरे सिर ते आवा सी। मन च कई विचार आंदे रहिंदे हन कि वह किवें हो सी, क्या दाणा पाणी चुकदी हो सी, क्या चिड़िया नूं हुकू अपने झुंडे च शामिल कर दिता हो सी, किथे वह कली तरह पै गई हो सी, क्या हूँ भी अपना घोंसला बनाया हो सी, क्या हुंदे भी बाल बच्चे थे हो सन, क्या साडे बारे भी अपने बालों को डसा हो सी, क्या कदाई एक घर लभण की कोई कोशिश भी की हो सी, साड़ी याद आंदी हो सी। एक अफसोस अज तक है कि काश झुंडे छोड़न तो पहले कोई निशानी तो ला देंदा, वो साकु बेशक भूल गई होवे हूं को पहचान अपने च उड़दे खेड़दे खांदे देख असा तो मन ही मन खुश थींदे तसली थी वेंदी। इयो ही मुराद मंगदे रहने हाँ कि वह जिथे भी होवे सुखी होवे, उनका हाल चाल जानन दी उवें ही चिंता बेकरारी इच्छा ते जिज्ञासा रहिंदी है जिवें अपनी बालड़ी दी हुंदे सोहरे। आखिर वह भी साडे घर च ही पली वधी ते विदा थई है, ये हुंदा पेका ही तो है। हर बालड़ी को अपने पेके नाल लगाव हुंदा ही है, हुंको भी जरूर हो सी आसी कहना कह निवार बालों को दिखावण उन्हां दी ननिहाल बेसब्री नाल करेंदा पिया हाँ इंतजार उस दिहाड़े दा। उम्मीद है तो कहानी पसंद आई है।
1: हुणे आप सब सुनते पे आवे है कहानी लगाओ जिंदे लिखारी हन श्री रामकृष्ण शर्मा जी। आओ हुण सुनते हैं एक सिराए की गीत अताउल्ला खां दी आवाज़ विच, न तू मिलसें न मैं मिलसा।

हिंदे नाल ही प्रोग्राम असा समाप्त करें दे पे हैं। हुण असा को इजाज़त देवो, को सलाम नमस्ते पेश करें दे वे, प्रोग्राम ख़त्म करन दी इजाज़त मंगदा, शुक्रिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअली शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। आज के कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त, अनुशासित और विचारवान बनने का आह्वान किया।
3: नशा एक आग है, आग वो एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। अपने गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसीलिए वो बूझना आवश्यक है। तुम्हारे आड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक नशा वाला, तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आग अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आएगी।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के साथ उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री

0: के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टर का भी विमोचन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअली सुना। सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद जिले में 491 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों और राजीविका समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा, पारदर्शिता और सर्वांगीण विकास के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था, विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वादों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर में 421 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने उदयपुर को शक्ति और भक्ति की भूमि बताते हुए कहा कि राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर्यटन के लिहाज से समृद्ध जिले हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका पुनर्वास करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। उन्होंने बालिकाओं के पुनर्वास के काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र को प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य के लिए तैयार हथकरघा इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र अगले 5 वर्षों में हथकरघा ज्ञान का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा और देशभर में बुनकरों, काय सदस्यों और हथकरघा पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। गौरतलब है कि देश का हथकरघा क्षेत्र 35 लाख से ज्यादा बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इनमें से करीब 70% महिलाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के GI टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। ये सम्मेलन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होगा। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देशभर से 100 से अधिक GI पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी स्पर्धा में कोटा की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में ये पदक हासिल किया। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है। अरुंधति ने मीडिया से बातचीत में खुशी और उत्साह व्यक्त करते हुए

0: अपनी जीत का श्रेय परिजनों और कड़ी मेहनत को दिया।
1: बहुत प्राउड हो रहा है, मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही हित में आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए, और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे टारगेट थे, और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में मैं अपने आप को पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे देख रही हूँ। तो इमोशंस अपने आप बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को ये मेडल पहनाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुंधति की इस जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कोटा में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
2: दिलजीत का कोटा का गर्व सम्मान बनाया, मैं उसको बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी थी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज उसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते, ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामना बताए। खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय

0: में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1: का कोटा का गर्व सम्मान बना है, मैं उसको बधाई देता हूँ, उसके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी थी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज उसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते, ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामना बताए। खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा में, गाँव शहर धानी विद्यार्थी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके।
0: सावन माह का कल पहला सोमवार है। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह कांवड़ियों के दल पवित्र सरोवरों से जल लाने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर में ताड़केश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अन्य मंदिरों में भी प्रमुख शिवालयों में कई धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में सुबह तेज बारिश हुई। पाली जिले में कई स्थानों पर तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई। बारा से भी रुक रुक कर बारिश होने के समाचार हैं। उदयपुर जिले में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश के बाद सीसारमा नदी 3.25 फीट बहाव पर चल रही है। पिछोला झील में पानी की आवक जारी है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने आज उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश और जयपुर अजमेर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल से मॉनसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से जोधपुर उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बारिश में कमी होने की आशंका है। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग शेखावटी क्षेत्र जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। इसे लेकर बीते दिनों जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य नागरिकों और समाज सेवियों से चर्चा करते हुए यूसीसी के प्रावधानों की जानकारी दी गई और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में सुझाव देने की अपील की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सुझाव इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया में समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिले के कई गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें हट्टीपुरा, गुड़ानाथावतान, रामनगर जाटान गांव शामिल थे। जिला कलेक्टर ने गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, लाड़ो प्रोत्साहन योजना और GSY के लंबित भुगतान तुरंत करवाने के निर्देश दिए। बीते दिनों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जनहित के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों के हित में कार्यस्थल के समय में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब श्रमिकों के लिए काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किए गए। विभिन्न

0: मंदिरों और आश्रमों में पहुंचकर पदाधिकारियों ने संतों महंतों और गुरुओं का विधि विधान से अभिनंदन किया। पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिले के युवाओं से माय भारत पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया। कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बीते दिनों नैनवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय, राजस्व न्यायालय और न्यायपालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीते दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विचाराधीन बंदी गण से मुलाकात कर उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। साथ ही वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जिले के 18 उत्कृष्ट चिकित्सकों और मृत्यु के बाद देहदान करने वाली दो महिलाओं के परिजनों का अभिनंदन किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला ने देहदान करने वाली महिलाओं के काम को अनुकरणीय बताते हुए उनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बूंदी रेड क्रॉस शाखा से जिले में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को व्यसन मुक्त बनाने का आह्वान किया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने समारोह को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा यातायात, जाप्ता, बैंड सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आवागमन और परिवहन, मोबाइल, टॉयलेट, मेडिकल टीम, पेयजल, अग्निशमन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरों पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रो लगस हासिल करवा खातर युवा वासों शारीरिक रूपों चुस्त, मानसिक रूपों मजबूत और आत्मविश्वासों भरपूर रैबा ने कया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजसमंद और उदयपुर जिला माए 900 करोड़ रुपया सो बत्तीरी लागत रा विकास कामारो लोकार्पण करिया और नींव राखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। और सावन मारो पहलो सोमवार काल प्रदेश भर शिव मंदिर में खास तैयारियां। समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के विकसित भारत खातर मोटियारा ने शारीरिक रूपों स्वस्थ, मानसिक रूपों मजबूत और आत्मविश्वासी वेणो चाहिए। आज नई दिल्ली में विकसित भारत खातर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान री वर्चुअल शुरुआत करता थका वे कया के युवावा ने हमेशा नशा सु दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनावनी चाहिए।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री कया के नशा मुक्ति खातर 100 हफ्तारो जन भागीदारी अभियान शुरू करियो जा रियो है, जिन माए प्रदेश भर माए हर दीतवार ने साप्ताहिक कार्यक्रम वेला। कार्यक्रम माए 28,000 ठोड़ा सो 1 करोड़ सो 32

0: युवा भाग लेना। इनमें भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना रा स्वयं सेवका रह सागे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय युवा क्लब गैर सरकारी संगठन और आध्यात्मिक संगठनारा प्रतिभागी शामिल वेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज जयपुरा सुबोध कॉलेज में राख्या कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान रे तहत नशा मुक्त युवारी शपथ दिलाई। वणा छात्रा रे सागे प्रधानमंत्री रो संबोधन भी सुनिया। वणा युवा वासु नशा मुक्त अनुशासित और विचारवान बणबा ने कया।
1: नशा एक आग है, आग वो एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। अपने गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसीलिए वो बुझना आवश्यक है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस पे तुम्हारे गांव में तुम्हारे नजदीक नशा वाला तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आग अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आएगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा युवा हमारे सागे उदयपुर नगर निगम ऑडिटोरियम में वीसी रे जरिए प्रधानमंत्री रो संबोधन सुनिया। इन मौके मुख्यमंत्री कया के राष्ट्र निर्माण में युवावारी महत्व भूमिका है। मुख्यमंत्री कया के राज्य सरकार मोटियारा ने नशा से दूर राग बा खातर प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थान में नशीला पदार्थों की रोकथाम खातर 350 से बत्ता कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। वे बताया कि अभियान में चोखो योगदान देबा वाला स्वयं सेवका और संगठना ने 50वां 75वां और 100वां सप्ताह पड़ाव माथे सम्मानित करियो जावेला। इन दौरान मुख्यमंत्री युवावा ने नशारी लत से दूर रहबारो संकल्प भी दिलायो। साथ ही नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टरो विमोचन भी करियो। प्रदेश न्यारा न्यारा जिला में राख्या कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मोटियार प्रधानमंत्री रा संबोधन ने वर्चुअल सुनिया। सिरोहीरा आबू रोड रा ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन परिसर में भी कार्यक्रम राख्यो गयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राजसमंद जिला में 491 करोड़ रुपया सो 32 लागत वाला न्यारा न्यारा विकास कामारो लोकार्पण करियो और नींव राखी। इन मौके वणा सामाजिक सुरक्षा योजना रा लाभार्थियां और राजीविका समूरी महिलावा ने चेक भी बांटिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका श्री शर्मा कया के राज्य सरकार जन सेवा पारदर्शिता और पूरा विकास रह सागे समाज रा हरेक वर्ग रा विकास खातर लगातार काम कर रही है।
2: हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान मजदूर युवा और महिला लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वायदों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
0: इनसे पहले मुख्यमंत्री उदयपुर में 421 करोड़ रुपया रा कई विकास का मारी सौगात दी। वना उदयपुर ने शक्ति और भक्ति री भूमि बताता था का कया के राजसमंद उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर्यटन रा लिहासु समृद्ध जिलो है। इन हलकारा विकास खातर राज्य सरकार कमर कस राखी है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कया के सड़क माथे भीख मांगबा वाला टाबरा ने चिन्हित कर वारो पुनर्वास करबा और माने शिक्षा से जोड़बा खातर जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करियो जावेला। उपमुख्यमंत्री शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता महकमारी योजनावारी समीक्षा बैठक रे दौरान कया के राज्य सरकारो लगस है के बालिकावां और बालका ने सुरक्षित आवास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। वणा टाबरिया रा पुनर्विकास रा काम ने प्राथमिकता से करबारा निर्देश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। इन केंद्र ने प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य खातर तैयार हथकरघा इकोसिस्टम रा निर्माण री दिशा में एक महत्व कदम मानियो जा रियो है। करीब 12 करोड़ रुपया री लागत सु बनबा वालो ओ केंद्र आवता 5 वर्षा में हथकरघा ज्ञान रो एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेला। AI सक्षम उपकरण बनावेला बेहतर करघा प्रौद्योगिकी ने

0: विकसित करेला पेटेंट और अनुसंधान ने बढ़ावो देवेला स्टार्टअप ने प्रोत्साहित करेला और देश भर रा बुनकरा संकाय सदस्य रा हथकरघा पेशवरा ने प्रशिक्षित करेला ध्यान जोग है कि देश रो हथकरघा हलको 35 लाख सु बत्ता बुनकरा और इनसु जुड़िया मजूरा ने रोजगार देवे है इनमाए करीब 70% महिलावा है राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी होड़ माए कोटारी अरुंधति चौधरी सोना रो तमगो जीतर इतिहास रच दिनो वना 70 किलोग्राम वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए उपदक हासिल करियो अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी रो स्वर्ण पदक जीत पावाली प्रदेशरी पहली महिला बॉक्सर है अरुंधति मीडिया सु बातचीत में खुशी और उछाव जताता था का आपरी जीत रो श्रेय आपरा घराला और कड़ी मेहनत ने दिनो
1: बहुत प्राउड हो रहा है मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही हित में आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे टारगेट थे और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में मैं अपने आप को पोडियम पे पोस्ट नंबर पे देख रही हूँ तो इमोशंस अपने आप बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को ये मेडल पहनाना चाहती हूँ बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुंधति री इन जीत माथे वाने बधाई देता था का कया के पूरा देश उन माथे गर्व कर रियो है बना कया के कोटा माए खेल री सुविधा वाने बढ़ावा खातर लगातार कड़ी कोशिश करी जा रही है
2: जीत का कोटा का गर्व सम्मान बनाया मैं उसको बधाई देता हूँ उनके परिवार को बधाई देता हूँ वो छोटी थी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज इसका सपना पूरा हुआ है अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप में जीते ये हमारा सपना है बहुत बहुत शुभकामना बताएं खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा में गाँव शहर धानी विद्यार्थी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके
0: काल सावन रो पहलो सोमवार है जयपुर समेत प्रदेश रा खास शहरा राशि मंदिरा माए खास पूजा अर्चना री तैयारी करी जा रही है ठोड़ ठोड़ कावड़ियारा दल पवित्र सरोवर सो जल लाबा खातर पू गया है जयपुर माए ताड़केश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालया माए श्रद्धालुआ री भारी भीड़ रे चालता प्रशासन खास इंतजाम करियो है प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोड़ा माए आज हल्को में बरसियो भीलवाड़ा माए सुमारे सु तेज पानी बरसियो वठी नेपाली जिला माए कई ठोड़ा माथे तेज तो कटे कटे हल्की बरसात भी बारां सुमे रुक रुक कर बारिश हो बारा समाचार है उदयपुर जिला माए कई ठोड़ा माथे तेज बारिश रे पाछे सिसारमा नदी 3.25 फीट बहाव माथे चल रही है वठी ने पिछोला झील माए भी पानी री आवक जारी है इन बीच मौसम केंद्र जयपुर आज उदयपुर और जोधपुर संभागरा कुछ हल्का माए छितराई तो कटे कटे तेज बारिश रो अंदाजो जतायो है सागे ही जयपुर अजमेर बीकानेर संभागरा कुछ एक भागा माए में बरस सके है महकमारे मुजब कालसु मानसून ट्रफ लाइन रा उत्तरी काने शिफ्ट हो बासु जोधपुर उदयपुर और कोटा संभागरा जिला माए बारिश री कमी रा आसार है हालांकि 3-5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग शेखावाटी हल्का जयपुर और भरतपुर संभाग माए हल्के सु मध्यम बारिश श्री गतिविधियां दर्ज वह सके है और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और लगस हासिल करवा खातर युवा वासु शारीरिक रूप में चुस्त मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहबा ने कया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद और उदयपुर जिला माए 900 करोड़ रुपया सु 32 लागत रा विकास काम और लोकार्पण करिया और नींव राखी केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली माए हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला और सावन माह रो पहलो सोमवार काल प्रदेश भरा शिवालया माए खास तैयारियां इंद्रसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो महा को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल

कार्यक्रम सुननिया सगळे परिवाराने भाई राजन का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों आपा सगळा खेती खड़ मिणख हाँ और आपने जी की खेती है बिना एक ऊंच स्तर पर ले जाण खातर आपा हमेशा आपकी खेती में नई नई तकनीकों को प्रयोग करता रहा। कदे कदे भाई लोगों आपने भी हूँ फायदो देखने ने मिले तो कदे कदे थोड़ो नुकसान भी आपने भी हूँ हो जाए। पर बड़ा बूढ़ा की अगर आपा बात माना तो बंग अनुसार जको आदमी बदलाव ने स्वीकार करे और बदलाव गए सागे चाले वो जीवन में खूब सफलता हासिल करे। पुराने टाइम की जी की खेती है बापा अपने बड़ा बुजुर्ग जी आपने सिखाई बिने समझ गए बिने करता आन लाग रहा हाँ और अच्छो उत्पादन अभी तक लेता रहा हाँ। आज वो टाइम है जी को भाई लोगों वो है आधुनिक खेती को, और आधुनिक खेती ने आपा स्वीकार करा तो आधुनिक खेती वैज्ञानिक तरीकों करी जाए, हर एक चीज़ को बारीकियों अध्ययन हुआ और आपा बिने समझ गए सीख गए और फिर आपके खेत के माँ लागू करा। तो ई कड़ी में ही आगे चला आपा और बात करा आपने किसान भाई जी का ई टाइम पर नरमा की फसल लगा रखी है तो बिंगी सार संभाल बै करता थका कि सावधानियां बरता है और फसल की बढ़वार की अवस्था में जब हारी बीमारियां कीड़ा कांटा फसल में लागे तो बिंगू बै क्या इलाज कर सके हैं। नरमा की बात करा भाई लोगों तो आपने भारत की प्रमुख नकदी फसलों में एक मानी जावे है। राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात और महाराष्ट्र में भी इनकी काफ़ी बड़े स्तर पर खेती करी जावे। इनकी अच्छी पैदावार लेने खातर आपा हमेशा ध्यान रखा कि कीटों को जी को नियंत्रण है वो समय रहते करना बहुत ही जरूरी है। जे टाइम पर आपा को नियंत्रण ना करा तो उपज में लगभग 30% लेकर 70% तक की कमी आ जाए। तो इनके खातर समेकित कीट प्रबंधन अपनाना आपने खातर सबो प्रभावी उपाय मान्यो जावे। अगर बात करें नरमा में लागण वाला प्रमुख कीटां की तो सब पहला नाम आवे धूलती माखी को, इन आप वाइट फ्लाई के नामों भी जाना। आपने जिकी बूंटा की पत्तियां हैं बांगू रस चूस है जकाऊ के पत्तियां पीली हो गए सूखण लाग जाए। कदे कदे आप देखा तो इनको प्रकोप इतो ज़्यादा हो जाए कि आ पत्ती मरोड़ जिको वायरस है वो भी अपनी फसल में फैलाते हुए हैं। इन्हें नियंत्रण खातर आपने किसान भाई पीड़ो चिपचिपो जी को ट्रैप है वो लगास कहाँ। इनके अलावा ध्यान रखा कि खेत में आपा खरपतवार कोई भी प्रकार की ना होने देवा और जरूरत होने पर आपने जिका भी कृषि वैज्ञानिक है बांगी सलाहूँ संबंधित कीटनाशी है जिको बिंगू छिड़काव आपा कर देवा। अगर नरमा कपास में संतुलित जिको समय कीटनाशी जीव प्रबंधन है बिना आपा अपनावा तो परिस्थिति का जिको संतुलन ने ध्यान में रखते हुए आपा वातावरण ने प्रदूषण मुक्त रखा फसल का जिका भी मित्र कीट है बांगो आपा ज़्यादा ज़्यादा संरक्षण करके रखा। कीटनाशकों को जिको उपयोग है आपा न्याय संगत तरीकों करा और कम लागत लगाकर आपा ज़्यादा और टिकाऊ जिको उत्पादन है वो ले लेवा। इनके अलावा भाई लोगों बात करें तो अपने प्रदेश में नरमा कपास की बोई जाने वाली कई ऐसी किस्म है जिका कम मध्यम और ज़्यादा समय में पाक कर तैयार हो जाए और अनापा अलग अलग श्रेणियों में बांट रखे हैं। कीट नियंत्रण की दृष्टियों के हर किस्म की जिकी फल आने की अवस्था है बैंग समय को आपने ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि सुंडियाँ होगी विशेष तौर पर के ई अवस्था पर सक्रिय हो गए आपने फसल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचावे हैं। तो ई चीज़ को आपने पूरु ध्यान रखनो है और धोड़ती जी की माखी है बिंगो अगर आपा आर्थिक हानि स्तर देखा तो व्यस्क माखी लगभग 8-12 अगर प्रतिपत्ति आपने मिले या अव्यस्क जी का छोटी माखी है 16-20 माखी प्रतिपत्ति आपने देखने मिले जिकी फसल में कीट की संख्या सुबह आपा 9 बजे पहले देखा या फसल में 20-25% तक पौधा है जिका वह कीट ग्रसित हो गया है तो आपा मांस कहा कि आंगो बहुत ज़्यादा प्रकोप है। यांत्रिकी नियंत्रण

ये आपा बात ही करी जी, आपा येलो स्टिक जी की टेप है, खाली पीपा पर पीलो रंग करके और अरंडी को तेल लगा गए, 8-12 पीपा जी का प्रति बीघा की दरों अगर आपा रखा तो इंगो कीट के सक्रिय काल में आपा ने खूब फायदों मिल रहे हैं। जैविक नियंत्रण की बात करें आपा तो परभक्षी जी का क्राइसोपा है, लगभग 12,000 प्रति बीघा की दरों आपा छोड़ सका है, और ज़रूरत पड़ने पर आपा परभक्षी ने फूल अवस्था में एक बार फेरू दोहरा भी सका है। रासायनिक नियंत्रण की अगर आपा बात करें तो नीम युक्त जी को आपा घोल बनावा जगह गमा तरल साबुन भी शामिल हुए, ये 5 मिलीलीटर की मात्रा 1 मिलीलीटर सागे मिला गया, यानी 5 मिलीलीटर नीम युक्त तेल और 1 मिलीलीटर तरल साबुन आंगो प्रति लीटर पानी में आपा घोल बना के छिड़काव करा तो धोड़ती माखियों आपा निजात पास कहा। इनके अलावा इमिडा क्लोरोपिड 17.8% SL को आपा लगभग 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई मिला सका हाँ। मिथाइल डिमेटोन 25% EC आ 2 मिलीलीटर दवाई आपा 1 लीटर पानी में रड़ा गया इंगो भी छिड़काव कर सका हाँ। एसिटामिप्रिड 20% SP लगभग 2.5 मिलीलीटर दवाई जी की है, आपा 1 लीटर पानी में मिला गए काम कर सका हाँ। थायोक्लोप्रिड की आपा बात करा तो आ 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में आपा बरत सका हाँ। और इन अलावा आपा कृषि वैज्ञानिकाओं संपर्क कर गए और उपलब्ध जिको भी रसायन है आपनों जरूरत के हिसाब हूँ बिंगो प्रयोग कर सका हाँ। आगे बात करें आपा भाई लोगों हरिया तेलिया की, तो हरे रंग गो हेलीकॉप्टर वर्गी इंगी शक्ल हुआ है और आकार लगभग 5 mm गो इंगो हुआ है। कीट के नुकसान की जिकी पहचान है और संभावित जिको सक्रिय काल है बिंगी जानकारी खातर आपा अगर ध्यान रखा तो पत्तियां की निचली सतह पर जिकी शिरावा बनड़ी हुए बिंगे कन्ने बैठ के वो रस चूस के आपने फसल ने नुकसान पहुंचावे, जिकाऊ के पत्तियां का किनारा हल्का पीड़ा पड़ जाए, फलस्वरूप वे पत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़न लाग जाए। तेला के ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां में के लाल बैंगनी रंग का धब्बा आपने दिखाई देने लाग जाए और वे सभी पत्तियां मुड़ गए धीरे धीरे सूखन लाग जाए और बाद में नीचे पड़ जाए। सक्रिय काल की बात करें तो मध्य जुलाई में लेकर सितंबर तक वो कीट पूरी रूपों सक्रिय हुए हैं। इन्हें नियंत्रण खातर आपा ध्यान रखा, एक तो सहनशील किस्मों को आपा चयन करा, संतुलित उर्वरकों को प्रयोग करा, और कीट रोधी किस्मों की आपा बात करा जी हाँ बीकानेरी नरमो RST9 RS-810 में वो आक्रमण कम हुए है तो आपा आगे भी जांच कर सका। और इनमें आपा कतारों कतार की दूरी लगभग 67.5 सेंटीमीटर रखा और ध्यान रखा कि यूं ज़्यादा आपा दूरी ना बढ़ा नहीं तो कीट को प्रकोप बढ़ सके है। जैविक नियंत्रण खातर आपा परभक्षी क्राइसोपा लगभग 10,000 प्रति बीघा की दरों छोड़ सका हम, और ज़रूरत पड़ने पर भाई लोगों परभक्षी ने फूल अवस्था में एक बार फेरू आपा दोहरा सका हम। रासायनिक नियंत्रण की बात करें आपा तो इमिडा क्लोरोपिड 17.88 SL लगभग 5 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में 1 ml दवाई आपा मिला सका हम। मोनोक्रोटोफास 36% SL 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के सागे प्रयोग में ली सका हाँ। एसीफेट 75 SP 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब में आपा घोल बना के छिड़काव कर सका हाँ। इनके बाद बात करें आपा माहू कीट की भाई लोगों, तो कोमल पत्तियां और टहनियां को रस चूस के अपनी फसल ने नुकसान पहुंचावे और यूं आगे आगे देखा तो पौधा की बढ़वार है जिकी बाबी रुक जाए है। नियंत्रण खातर आपा लेडी बर्ड जिकी बीटल है ईसा मित्र कीटा को संरक्षण करा और जरूरत होने पर अनुशंसित कीटनाशकों को भी प्रयोग कर सका हाँ। थ्रिप्स की बात करा तो यह पत्तियां ने खुरच के धीरे धीरे वांगू रस चूस है और जिकाऊ पत्ती चांदी बरगा रंगी आपा ने दिखाई देने लाग जाए। नियंत्रित खातर आपा नियमित निरीक्षण करा और जरूरत के हिसाब में आपा दवाई को छिड़काव करा। गुलाबी सुंडी की बात करा तो आ कपास की सबू खतरनाक सुंडी के रूप में निकल गावे, टिंडा गए अंदर घुस गए रुई और बीज ने भी आग कदी कदी नुकसान पहुंचा देवे। इन्हें नियंत्रण खातर अपने किसान भाई ध्यान रखे, एक तो समय पर बीजांत करें और जिका संक्रमित टिंडा है बने समय रहते नष्ट कर देवे। फेरोमेन ट्रैप लगावा और जरूरत होने पर कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित जिका भी कीटनाशक है बांगो प्रयोग करा। अमेरिकन सुंडी की बात करा तो आप फूल और टिंडा दोनों ने नुकसान पहुंचावे और समय रहते नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हो जावे। फेरोमेन ट्रैप को उपयोग इन खातर आपा कर सका हाँ, जिकी भी छोटी सुंडियां हैं या बांगा अंडा है बाना आपा नष्ट करा और आपा जिको भी अनुशंसित रसायन

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: भाई लोगों, संदेशों पहला आपा सुनो भजन, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी बाणी रे। चला आपा एक बार फिर अपनी खेती पाती की दुनिया में, तो आपा देखा कि आपनों जिको भारत देश है भी मैं खेती की हमेशा हूँ प्रधानता रही है, पर खेती के अलावा भी आपा बात करें तो कई ऐसा काम है या यहाँ कह देवा कि कई ऐसा व्यवसाय है जिका आपा खेती और संबंधित खेती के सागे अपना गए, आपकी जिकी आर्थिक आय है वह बढ़ा सका और आर्थिक आय गुस्तर है बिने भी ऊंचो लेके जा सका हम। एक कड़ी में बात करा आज आपा सूअर पालन की। सूअर पालन भाई लोगों एक लाभदायक और तेजियों विकसित होने वालों पशुपालन व्यवसाय है। कम लागत में ज़्यादा लाभ देने के कारण वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रोजगार को एक अच्छा साधन बन गया है।

सुअर बाकी जिका पालतू पशु है बांगी तुलना में तेजी बढ़े हैं और ज़्यादा बच्चा भी उत्पन्न करें हैं। इनके अलावा बात करें तो भारत में सुअर पालन को जिको महत्व है वो लगातार बढ़ने लग रहे हैं। कम लागत में आपा वो सुअर पालन शुरू कर सका हाँ और कम टाइम में ज़्यादा लाभ भी ले सका हाँ। और महत्वपूर्ण की बात करें आपा तो सुअर एक तो तेजी में बढ़े है और बांगो वजन भी जल्दी बढ़ने लग जाए। एक मादा सुअर एक बार में लगभग 8-12 बच्चा ने जन्म देवे है और साल में लगभग 2 बार तक यह ब्याह जावे है। ग्रामीण युवाओं की बात करें तो बाघा खातर रोजगार को एक अच्छो साधन है और खेत और रसोई का कई प्रकार का जिका अवशेष है बांग उपयोग आपा आगे चारा के रूप में भी कर सका हाँ। प्रमुख नस्लों की भाई लोगों से आपा बात करें तो देसी नस्लों में बात आवे देसी सुअर और घुंघरू की, जैठे विदेशी नस्लों में देखा तो हैम्पशायर ड्यूरोक लैंडरेस और लार्ज वाइट यॉर्कशायर। आवास व्यवस्थाओं संबंधित आपा कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है जिया सुअरशाला हमेशा ऊंचा और सूखी जगह पर आपा ने बनानी चाहिए। साफ सफाई के सागे सागे हवा को भी आपा ने बैठे अच्छो प्रबंध रखना है। पीण खातर हमेशा स्वच्छ पानी आपा बाने उपलब्ध करावा और मजबूत फर्श के सागे सागे पक्को और ढलान होनी चाहिए अपने फर्श में ताकि के गंदो पानी आसानी में निकल सके। गर्मी और सर्दी जद भी जिको भी मौसम हुआ बिंग हिसाब वहाँ पाने उचित व्यवस्था बना के रखनी है। आहार प्रबंधन की बात करें तो आपा बने संतुलित और पौष्टिक आहार ही देवा जिया हरे चारो अनाज चोकर मक्का सोयाबीन की खली और खनिज मिश्रण ऐसा सगला आपा में शामिल कर सका हाँ। हमेशा आपा ने पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उपलब्ध करावा और जितना भी छोटा बच्चा है बांगी आयु के हिसाब हुआ पापा ने आहार देवा। प्रजनन प्रबंधन की चर्चा करा तो मादा सुअर लगभग 8-10 महीना की आयु में ब्याण गए योग्य हो जावे है। आंगो गर्भकाल लगभग 114 दिन को हुए है और प्रसव के टाइम पर आंगी विशेष देखभाल करनी बहुत जरूरी हुए है। जन्म के बाद बच्चा ने मांगो पहलो दूध जरूर पिलावा और रोग और बचाव आंगो भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि सूरा में कुछ प्रमुख रोग लागे है जिया स्वाइन फीवर फुट एंड माउथ डिजीज कृमि संक्रमण और त्वचा रोगी जिका त्वचा संबंधी जितना भी रोग है। आऊँ बचाव खातर एक तो आपा समय पर आंगो टीकाकरण करवावा नियमित कृमिनाशक जी की दवाई है बापा ने देता रहा। पशुशाला की साफ सफाई हर समय रखा जिका भी बीमार पशु है बने स्वस्थ पशुओं न्यारा रखा और पशु चिकित्सक की सलाह में आपा सब काम करा। सुअर पालन के मोटा मोटा अगर फायदा की आपा बात करा कि अपना जिका नया किसान भाई है और वह सुअर पालन के बारे में जानकारी लेना चाहे और सुअर पालन जी को व्यवसाय शुरू करना चाहे तो सब मोटो फायदा हुआ है कि कम पूंजी में एक अच्छो व्यवसाय आपा शुरू कर सका हाँ तेजी उत्पादन और आय देना हो आपा ने। इनके अलावा जैविक खाद के रूप में आपा गोबर का उपयोग कर सका हाँ और अपनी जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बिना भी मजबूती दे सका हाँ। इनके खातर अपनी सरकार भी आपने सहायता प्रदान करने लग रही है। केंद्र और राज्य सरकार टाइम टाइम पर पशुपालन विभाग द्वारा और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यमों बाकी योजनाओं के माध्यमों प्रशिक्षण के सागे सागे ऋण और अनुदान की सुविधा भी प्रदान करने लग रही है। इच्छुक किसान जी का आपके जिला के पशुपालन विभाग को जानकारी प्राप्त कर सके हैं। मोटी मोटी बात करें भाई लोगों तो सुअर पालन कम लागत में कम टाइम में ज़्यादा फायदा देने वाला व्यवसाय है। जे वैज्ञानिक तरीकों आपा नस्ल चयन संतुलित आहार खुआ गए उचित आवास बने दे देवा समय पर बांगू टीकाकरण करवा गए स्वच्छता को ध्यान रखें तो किसान भाइयों खातर पशुपालक भाइयों खातर आय बढ़ाने को एक प्रभावी माध्यम बन सके। सुअर पालन ग्रामीण रोजगार पोषण सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देवे है। तो आ सगली जानकारी सुअर पालन के अपने किसान भाई ध्यान रखे। चला एक बार फिर हूँ गीत संगीत की दुनिया में और सुना देवा थाने वो गीत लियो सुनो सा।

सुनो भाई लोगों, आपा गीत चला एक बार फिर वहाँ अपने कार्यक्रम में आगे की तरफ। और अब चर्चा करा आपा मौसम गए अनुरूप, जी हाँ, कठे कठे बिरखा होने लाग रही है, कठे कठे कोनी हो रही, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिरखा होने लाग रही है, जो कहूँ के है कि जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न होने लाग रही है। तो बिरखा ऋतु में क्या है, कठे कठी आपा ने बहुत सुख मिले तो कुछ सावधानियां रखनी भी अपने खातर जरूरी हुए। बिरखा ऋतु में भाई लोगों कई जगह पर पानी भरने की जी की समस्या है, बहुत उत्पन्न हो जाए खेता में, सड़क में, छोटी गलियां में और पशुशाला में भी कई बार पानी भर जावे है, जो कहूँ कि है कि बच्चा और पशुओं के स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। तो इनके खातर बरसात के मौसम में आपा जल भरा वाला जितना भी स्थान है बाऊ बने दूर रखा भी तो ही बढ़िया है। पानी भरनु कई प्रकार का नुकसान है जिको वो आपने देखने ने मिले। सब पहले तो गंदा पानी में के धीरे धीरे मच्छर पनपन लाग जाए, जो कहूँ डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया वर्गी बीमारियाँ जी की फैलन लाग जाए। दूषित पानी के संपर्क में आया उनके है पशुओं ने दस्त लाग गया, हैजा हो गया, टाइफाइड या त्वचा रोग होने को भी खतरों बढ़ जाए। पानी भराव में फिसलन के सागे सागे दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ी रहे और कदे कदे बिजली का तार या जिका भी उपकरण है वह पानी के संपर्क में आने पर करंट लागण को भी खतरों बने रहे। तो पशुओं के सागे सागे जिका घर का छोटा टाबर है बांगी भी सुरक्षा करनी अपने खातर बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा खातर आप ध्यान रखा कि बच्चा ने कोई भी इसी जगह जठे भारी मात्रा में पानी भरे, गड्ढा में या नाड़ा के आसे पासे खेलन खातर आपा ना भेजा। बिरखा के टाइम पर बच्चों की विशेष निगरानी रखा, साफ सुथरी और सूखी जगह पर ही आपा बने खेलन खातर भेजा। इंगे लागा भीगण पर बांगा आपा तुरंत कपड़ा बदल देवा और साफ और सूखा कपड़ा आपा बने फिर पर आ देवा। हमेशा स्वच्छ और उबलड़ो या सुरक्षित पेयजल आपा बने पिलावा और हाथ धोण के सागे सागे व्यक्तिगत जिकी भी साफ सफाई है बिंग आदत भी आपा बांगे अंदर विकसित करा। अपना जितना भी पशुधन है बांगी सुरक्षा खातर भी आपा कुछ काम कर सका है, जी हाँ, पशुओं ने थोड़ी ऊंचाई पर और सूखी जगह पर आपा रखा, पशुशाला में बिरखा को पानी जमा ना हुए इंग खातर आपा उचित पानी निकासी की व्यवस्था करा और पूर्व प्रबंध रखा कि पशुशाला का मां पानी आवे ही ना। अगर पशुओं को जी को चारो है वो गीलो हो गया है तो वो चारो आपा बने ना खिलावा, साफ सुथरो और ताजो चारो आपा बने खुआन खातर देवा। कोई भी सूरत पर पशु सड़ेड़ो या गलो चारो ना खावे इंगो विशेष ध्यान रखा। पीण खातर हमेशा स्वच्छ पानी उपलब्ध करावा। पशुशाला की नियमित तौर पर सफाई कराने के सागे सागे कीटाणुनाशक जी की

दवाइयां हैं, बांगों भी छिड़काव करता रहा। जिका भी पशु कोई भी कारण बीमार हो गया तो बने स्वस्थ पशुओं वापा न्यारा रखा और तुरंत पशु चिकित्सक को बांगो उपराज कराता रहा आपा। कदे कदे देखा तो आपा कुछ जगह पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाए तो पानी भरण की स्थिति में कि आपने परेशानी को सामना करना पड़े, तो इन्हें रोकने खातर आपा अपने आसपास की जिकी भी नालियाँ एवं नियमित सफाई करवावा, पानी जल की जिकी उचित निकासी की व्यवस्था हमेशा करता रहा। घर और पशुशाला गए आसपास पानी जमा ना हुए इनको पूरा प्रबंध रखा और कोई भी ऐसा गड्ढा बन रहा है तो बांगो पूरा जाप तो कर देवा और बने अच्छी तरीकों भर देवा। बिरखा ऋतु में के कई बार जल भराव हो जाए तो बाहू बच्चा ने और पशुओं ने दूर रखनो बांगे स्वास्थ्य खातर और सुरक्षा खातर बहुत ज़रूरी हो जाए। स्वच्छता के सागे सागे सुरक्षित आवास, साफ पानी और टाइम पर सावधानी अपना गा आपा कई प्रकार की बीमारियां और दुर्घटनाओं बने बचा सका। जागरूकता के सागे सागे उचित प्रबंधन के है परिवार और पशुधन दोनों ने आपा सुरक्षित रख सका। तो किसान भाई आ जानकारी जरूर ध्यान रखे और जरूरत पड़न पर पूरो जाप तो जरूर करें। चाला कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुनवा था ने एक रागणी, लियो सुनो सा।

सुनी भाई लोगों आपा रागणी। ये रागणी के माध्यम भाई लोगों आपा ने संगीतकार गीतकार एक संदेश देनो चाहे है कि रोए मान घटे बंदा गो, दुख चिंता में काया जावे, अनिति की राह पर चाला तो मान घटे और झगड़िया में धन माया। हमेशा ईमानदारी अपना गए, सच्चाई के रास्ता पे चाल गए, जद आपा जीवन में आगे बढ़ा तो ईश्वर भी आपनो पूरो साथ देवे। चला भाई लोगों कार्यक्रम में आगे की तरफ और बात कर लेवा इस दौरान आपने पशुओं में टीकाकरण के ऊपर। समय समय पर के पशुओं में भाई लोगों कई तरीका का संक्रामक रोग होता रहे, जिंगी वजह के कदे कदे पशु की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाए तो कदे कदे पशु बहुत बीमार हो जाए और इसी स्थिति भी आ जाए कि पशु की मृत्यु भी हो जाए। पशुओं में बीमारी होने के पशुपालक भाई जीता भी है अपना बांगों ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ जाए, जिनके खातर के पशुओं ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों बचाने खातर टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। रोग निरोधी और समय के हिसाब में टीकाकरण कराना पशुओं की रक्षा करके आपा जितना भी संक्रामक रोग है बांगी रोकथाम कर सका हम। पशुओं ने पूरी सुरक्षा प्रदान करने खातर आपा वैक्सीन का उपयोग कर गए संक्रामक जितना भी रोग है बाऊ बचा सका हाँ। और सामान्य तौर पर देखा तो संक्रामक रोगों के प्रति निश्चित उम्र और निश्चित टाइम के अंतराल पर टीकाकरण करो जावे है। रोग की जितनी व्यापकता है बिंग आधार पर टीकाकरण जी को कार्यक्रम है वो न्यारू न्यारू हो सके और अपना जितना भी मिनक है बांगी भांति पशुओं में भी रोग प्रतिरक्षा खातर टीकाकरण बहुत जरूरी है। टीकाकरण के प्रति अपना देखा तो कई किसान भाइयों में अलग अलग तरीका का भ्रम फैल रहा है, जिया टीकाकरण दूध उत्पादन पर कोई फर्क तो को नहीं पड़ जाएगो, पशुओं में ग्याबन पशु है बिंगी सेहत पर तो कोई असर को नहीं हो जाएगो, या मुफ्त को टीको लगावा आपा वो कोई काम थोड़ी करे, या बारी बारी टीकाकरण की जरूरत क्यों है, आपनो पशु तो बीमारी को नहीं तो फिर टीकाकरण आपा क्यों करावा। ऐ कई प्रकार का भ्रम जिका अपना पशुपालक भाइयों के मन में हो है। तो राजस्थान सरकार का जिका पशुपालन विभाग है बिंग द्वारा कई ऐसी बीमारियां हुए जिका के खातर निःशुल्क आपा टीकाकरण करवा सका हाँ। और कई टीका ऐसा हुआ भाई लोगों जिका साल में दो बार लागे जिका ने लगवाना बहुत जरूरी है और टीकाकरण ही पशुओं में होने वाली जितनी भी गंभीर और संक्रामक बीमारियां हैं बांग बचाव और उपचार को एकमात्र जरियो है। टीकाकरण का फायदा की आपा बात करें तो पशुओं में जितना भी संक्रामक रोग है बांगी रोकथाम खातर टीकाकरण सब ज़्यादा उत्तम विधि है। टीकाकरण पशुओं के शरीर में बीमारी के प्रति आपा रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता हुए बिना विकसित कर सकें और पशुओं की जी की विभिन्न

संक्रामक रोगों सुरक्षा प्रदान करने खातर मदद कर सका हम। टीकाकरण करने के पशुओं को स्वास्थ्य है और बांगो खुद को जिको प्रतिरक्षा तंत्र है वो तो मजबूत हुआ है, सागे सागे रोगों लड़न की क्षमता भी बांगे बंदर आ जावे। कई रोग ऐसा हुए भाई लोगों जिका लक्षण कुछ पशुओं में मजबूत जिको प्रतिरक्षा तंत्र है वो होने की वजह दिखाई को नहीं देवे और कई जिका कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र हाड़ा जिका पशु है वह जल्दी बीमार हो जाए। जिका ना आप कह दें कि कई पशुओं की जिकी इम्यूनिटी है बात वो बढ़िया है जिको मतलब जल्दी बीमार को नहीं हो और कुछ पशु है जिका वह जल्दी बीमार हो जाए। तो जिका भी कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाला पशु है बांगो बचाव टीकाकरण के माध्यम ही हो सके। टीकाकरण कर गए पशुओं ने बीमारियों बचाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और बीमारी में पशु को जिको दूध उत्पादन है वो कम हो जाए और बीमार पशु के इलाज में देखा तो दवाइयाँ या कई इसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आवे बांगो भी खर्चो बढ़ जाए। टीकाकरण को भाई लोगों समय अगर आप अनुपालन कर गए पशुओं ने स्वस्थ और ज़्यादा उत्पादनशील रखने में आपने बहुत मदद करे और टीकाकरण के माध्यमों जितना भी पशु जनित बीमारी है जिकाऊ पशुओं के माध्यमों आपने मिनखा में भी संक्रमण हुआ है तो बिना भी आपा रुक सका हाँ। टीकाकरण की मदद तो जितना भी संक्रामक रोग है बाऊ जुड़ेड़ा जितनी भी चीज़ा हैं बांगू आपा उपचार कर सका हाँ और आगे आने वाली जिकी आपने लागत है बिना कम कर गए पशुपालक भाइयों को जिको आर्थिक बोझ है बिना भी कम करने में सहायता मिले। टीकाकरण में कुछ ऐसा जरूरी काम है जिका आपने भाई लोगों जरूर जरूर करना है। जी हाँ, टीकाकरण कम एक हफ्ता पहले पशुओं ने आपा कृमिनाशक औषधियाँ खुआ गए कृमि मुक्त करते वहाँ। टीकाकरण गए दो हफ्ता बाद तक पशुओं ने आपा तनाव मुक्त रखा। स्वस्थ जिको भी पशु है बिना आपा रोगी पशु के संपर्क को हमेशा बचावा और डिस्पोजेबल जिकी सिरिंज और सुई है बिंगो यापा उपयोग करा चमड़ी के नीचे या मांसपेशियाँ में ही आपा लगावा। हमेशा सुनिश्चित करा कि टीका जिकी उपयोग अवधि है बा खत्म ना हुई हुए इंगो ध्यान रखा। जी आपा साधारण कोई मिनख दवाई खावा तो बिंगो ऊपर आपा तारीख की जांच करा कि भाई एक्सपायरी डेट तो कोनी आ गई है बिया ही पशुओं को जब टीकाकरण करवावा बाजारों खरीद के लियावा तो बिंगी भी आपा पूरी सावचेतियों निगरानियों ध्यान रख के तारीख चेक कर लेवा कि कठे यहाँ तो ना है कि बा एक्सपायरी होगी और आपा पशुओं ने लगाते वहाँ। हमेशा ध्यान रखा कि सील बंद टीको आपा पशु खातर लेगा वहाँ और बिंगी उपयोग अवधि बी टाइम पूरी होनी चाहिए। कोई भी प्रकार अगर आपने कोई दवाई के प्रति संशय हुआ तो तुरंत जठू आपा दवाई ले गए आया हाँ या लेन लाग रहे हाँ तो बन के आपा भी ने बदलवा लेवा। और टीकाकरण सारणी जी की आपने कृषि अनुसंधान केंद्र ज्ञात हुई है या आपने जिका डॉक्टर साहब है बांगी माध्यमों आपने पता चले तो बिंग आपने पूरा पूरा पालन करना है और जिकाऊ के पशु पूर्ण रूपों सुरक्षित रहे। कई ऐसा काम धंधा भी है भाई लोगों जिका आपने अपनी खेती में कोनी करना है। जी हाँ, टीकाकरण के दो हफ्ता बाद तक ध्यान रखा कि पशुओं ने अनावश्यक तनाव ना आवे। रोगी दुर्बल और जिका वृद्ध पशु है बा मैं आपा पशु चिकित्सक की सलाह ले गए ही काम करावा आपकी इच्छा अनुसार टीकाकरण ना करावा। टीकाकरण के बाद दो हफ्ता तक पशुओं ने उपचार खातर एंटीबायोटिक औषधि या कृमिनाशक प्रतिरक्षा जी की दवाइयां हैं बांगो प्रयोग आपा ना करा। या बिन जीता भी पशु है बामे गर्भावस्था के अंतिम दिना में टीकाकरण कोनी करो जानो चाहिए। संक्रमित या रोगग्रस्त जिका भी पशु है बाने टीकाकरण परहेज करानो चाहिए। तो आ चीजों को आपने ध्यान रखना है। कई ऐसा रोग भी है भाई लोगों जिका के माध्यम के है कि आपा अलग अलग रोग की अलग अलग वैक्सीन हुए हैं। जी हाँ, खुरपका मुँहपका रोग खातर आपने भाई लोगों MFD वैक्सीन को प्रयोग आपने पशुओं खातर करो जावे है जिका को टीकाकरण समय हुए 4-6 महीना की उम्र हाड़ा पशु खातर 21 दिन बाद भी ना आप बूस्टर दे देवा और साल में 2 बार आप भी ना लगा सका। मार्च अप्रैल का महीना में भी लगा सका और सितंबर और अक्टूबर के महीना में भी आप भी ना लगा सका। गलघोटू की बात करा तो इनके खातर HH वैक्सीन है जिकी बापा प्रयोग ले सका हाँ। टीकाकरण को जिको समय हुए वो 4-6 महीना के हिसाब में आपने लगाना है और इन ज़्यादा की उम्र पर हर साल मानसून के पहले मई या जून में आप टीकाकरण कर सका हाँ। लंगड़ा बुखार खातर भाई लोगों BQ वैक्सीन है जिकी बापा प्रयोग में ले सका हाँ, जिकी 4-6 महीना के उम्र के पशु के हिसाब में आप लगा सका हाँ। और इन ज़्यादा की जय उम्र हो जाए तो हर साल

सुनो पहले आपा, मैया जून का महीना मैंने लगास कहा। कई और भी रोग है भाई लोगों, जिका खातर अलग अलग तरीका की वैक्सीन और अलग अलग तरीका की जी की दवाइयाँ हैं, वह आपा पशु चिकित्सक भाइयों संपर्क करके लगवास कहा। बात करा ब्रुसेलोसिस जी की बीमारी है, बिंग खातर कोटन स्ट्रेन 19 जी की वैक्सीन है, बापा पशुओं में लगवास कहा। 4 और 6 महीना की बच्चियां में आपा आ दवाई जीवन में केवल एक बार ही लगवानी है। थाइलेरियोसिस जी को रोग है, बिंग खातर थाइलेरियोसिस वैक्सीन जी की ने रक्षा व्यक्ति के नाम भी आपा जाना हाँ, बाबी आपा पशुआ ने लगास कहाँ। 3 महीना की उम्र में आपा या यूं ज़्यादा की उम्र में भी लगास कहाँ। 3 महीना छोटो पशु हुआ तो बिना आपा आ वैक्सीन कौन लगानी। कहने का मतलब है 3 महीनों या भी यूं ज़्यादा की उम्र में ही पशु ने आ वैक्सीन लगानी है और जीवन में आ वैक्सीन भी एक बार ही लगे। इनके अलावा एंथ्रेक्स जी को रोग है, बिंग खातर रक्षा एंथ्रेक्स वैक्सीन आवे है, जिकी 4 और 6 महीना उम्र आला पशु के लगानी है या ब्यू ज़्यादा की उम्र को जिको पशु है तो साल में इनको टीकाकरण आपने करवाना है। और जठे वो रोग ज़्यादा फैलाव में है भी क्षेत्र में ही आप इनको टीकाकरण करवाना है। इनके अलावा और भी आपने पशु ने कोई भी प्रकार की बीमारी है या कोई भी प्रकार का अपने बीमारी का लक्षण दिखने लग रहा है तो आपकी मर्जियों कोई भी टीकाकरण ना करवावा। पशु चिकित्सक जिक्सा ने आपा लगातार पशु की स्वास्थ्य खातर बुलाने लाग रहे हैं, बहु जरूर जानकारी लेवा और जानकारी ले गए बे बाद ही आपा जिकी दवाई बे बतावे बाही पशु खातर लेके आवा। विशेष तौर ध्यान देवा आपा कि टीकाकरण कराने पहले पशुआ ने अंतः परजीवी जिकी नाशक दवा है वह हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह पर ही देनी चाहिए। टीकाकरण के तुरंत बाद पशुओं ने खराब मौसम या ज़्यादा व्यायाम हो आपा ने बचाना है। टीकाकरण कार्यक्रम ने पूरी तरीक़ा को सफल बनाने खातर वो आवश्यक है कि टीका को संरक्षण हर स्थिति में आपा उचित तापमान पर ही करा। तो आ जानकारी आपने किसान भाई जरूर जरूर ध्यान में रखें। फिर भी खेती पातियों संबंधित या आपा जी को पशुपालन करने लाग रहे हैं भी उन संबंधित आपने कोई भी जानकारी अगर लेनी हो है तो नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आपा पूरी जानकारी ले सका हाँ। और पशुओं के संदर्भ में आपा पशु चिकित्सक ने बुला गए पूरी जानकारी ले गए फिर ही आगे कोई कदम उठावा। तो चला कार्यक्रम गए अंतिम गीत की तरफ और सुनावा थाने वो गीत लियो सुनो सा।

भाई लोगों, आज खातर तो इतो ही। अब ये गीत के साथ गई आज को चौपाल कार्यक्रम 28 संपन्न करण की भाई राजन ने आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।

कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनिए। एक ही फिल्म से कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी श्रोता मित्रों को आज के मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है, जहां बिना कहे बातें समझी जाती हैं, जहां खुशी दोगुनी और गम आधे हो जाते हैं। आज के इस मित्रता दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत करें इस बात के साथ कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं जो मुस्कान देती है, सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेती है।

साथियों, मित्रता दिवस पर आज आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दोस्ताना फिल्म के गीत, जिसमें अभी आपने सुना किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। साथियों, कहते हैं कि दोस्त आईना होता है और परछाई भी होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। यही तो दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक सच्चा दोस्त सदैव परछाई बनकर आपके साथ चलता है, और जहाँ कहीं भी आप गलत होते हैं या राह भटकने लगते हैं, तो आईना की तरह वो आपको सही राह दिखाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए, तो ये उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। बहरहाल, आइए हमारे कार्यक्रम का अगला गीत सुने आज की फिल्म दोस्ताना से।

साथियों, अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, और फिल्म हमारी आज की दोस्ताना, क्योंकि आज मित्रता दिवस है। साथियों, दोस्ती का नाम है विश्वास, या हम यूं कहें कि दोस्ती नाम है विश्वास का, दोस्ती नाम है एहसास का। आज के दिन केवल मित्रता दिवस मनाना ही मायने नहीं रखता, केवल अपने मित्रों को ये कहना कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मैं जितना ही कहना उचित नहीं है। यदि आपकी दोस्ती है तो वो दिल से होनी चाहिए। यदि आप किसी साथी के सच्चे मित्र हैं तो हर परिस्थिति में आप उसका साथ निभाएं। जब आपका दोस्त उदास हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी आपकी है, और यही सच्ची दोस्ती है। और जब कभी वो जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल हो तो उसकी खुशी में शामिल होने का नाम दोस्ती है, यानी दोस्त के दुख को आधा करना और खुशी को दोगुना करने का नाम ही दोस्ती है, और वही इस मित्रता दिवस की सार्थकता है।

मित्रों, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी अगर कोई है तो वो है सच्ची दोस्ती। बचपन की शरारतें, स्कूल की मस्ती, कॉलेज की यादें और जीवन के हर पड़ाव पर हमारा साथ निभाने वाले हमारे मित्र,

हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो भी मित्रता की बहुत सी मिसालें हमें देते हैं। कहा जाता है कि मित्र कृष्ण के समान होने चाहिए, जो बिना हथियार उठाए भी मित्र की हर चुनौती को, हर समस्या को हल कर दें, उन्हें सदैव सही राह दिखलाएं। और दूसरी तरफ करण जैसे भी मित्र होने चाहिए, जिन्हें भले ही परिणाम पता हो, फिर भी वो अपनी वफादारी, वो अपना साथ अपने मित्र के लिए सदैव बनाए रखें, उनसे कभी भी दूर होने की सोचे भी नहीं। बहरहाल आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएं।

मित्रों, यदि किसी भी मित्र से आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है या किसी बात को लेकर आपके वैचारिक मतभेद हो गए हैं, तो आज का दिन सबसे बेहतर है। आज आप उन्हें फ़ोन करें और उनसे कहें कि आपकी मित्रता मेरे जीवन का अमूल्य योगदान है। उनसे कहें कि रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती, कि रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती, दोस्ती से बड़ी कोई इबादत नहीं होती, जिसे मिल जाए सच्चा दोस्त उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती।

मित्रता दिवस पर आज की हमारे इस कार्यक्रम को इसी गीत के साथ विराम दें। आप सभी मित्रों को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में कल हुई स्वर्ण पदकों की बारिश पे और साथ साथ नज़र होगी आज होने वाले शानदार भव्य क्लोजिंग सेरेमनी पर भी बात की जाएगी। आज कार्यक्रम में तन्वी शर्मा के उस इतिहास की जो उन्होंने ताइपाई ओपन के बैडमिंटन कोर्ट पर रचा है, और संडे है तो बिल्कुल दी जाएगी फिटनेस की थोड़ी सी डोज। लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान 7 पदकों के साथ संपन्न किया। 3 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक शामिल। तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता और एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 84वां संस्करण नई दिल्ली सहित पूरे देश में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू होगा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की हलचल के साथ, जो अब अपने समापन के निकट पहुंच चुका है और अब से कुछ घंटों बाद इस खेल का भव्य समापन समारोह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों पे हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर के जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी विशेष। लेकिन पहले बात की जाए शनिवार के दिन की, यानी कल के दिन की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की धमक से गुंजायमान होता नजर आया पूरा का पूरा ग्लासगो। और पदक तालिका में 11वें स्थान से शुरू हुआ दिन समाप्त होते होते भारत को 4थे स्थान पर लेकर आ गया। और इस कहानी का एकमात्र किरदार थे भारतीय मुक्केबाज, जो जब रिंग में उतरे तो स्वर्ण पदक की बारिश होती नजर आई। अपने फाइनल मुकाबले खेलने उतरे 10 भारतीय मुक्केबाजों में से 7 ने जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जबकि 3 मुक्केबाजों ने रजत पदक भारत की झोली में डाले। आइए सुनते हैं भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय मुक्केबाजों की ताकत के आगे दुनिया भर के दिग्गज बेअसर नजर आए, जहां रिंग में उतरते भारतीय मुक्केबाजों ने एक के बाद एक स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में भारत के लिए खाता खोला, जिन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्स को 5-0 से शिकस्त कर खिताब अपने नाम किया। साक्षी ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अगले ही मुकाबले में प्रिया घणगस ने कनाडा की मैरी बथुल अल अहमदीह को 4-1 से मात देकर पदक तालिका में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अंकित कर दिया। मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों में सचिन सिवाच ने इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड अपने नाम किया। SEC 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। चैंपियन इन द रेड कॉर्नर फॉर इंडिया। अंकुश ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। भारत के लिए पदकों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा। नरेंद्र ने पुरुष के 90 किलो से अधिक वर्ग में रजत पदक जीता। जादूमणि सिंह को भी ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन के खिलाफ 5-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो विशेष, क्या कहा जाए कि शनिवार का दिन भारत के लिए बॉक्सर्स डे शामिल हुआ।
2: ये शक्ति, मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बॉक्सर्स डे नहीं, गोल्डन डे साबित हुआ है। भारत ने 7 गोल्ड मेडल भारतीय मुक्केबाजों ने जीते और 3 जो है सिल्वर मेडल उनकी झोली में डाले।
0: जी बिल्कुल, और एक गोल्ड मेडल और भी आया इसके इतर। लेकिन क्या कहा जा सकता है इन मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर। हमने रिपोर्ट में सुना 10 खिलाड़ी थे, उन पर कितनी चर्चा हो पाएगी वो तो संभव नहीं है, लेकिन क्या सबसे खास आउटपुट रहे इन 10 खिलाड़ियों के, क्या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं भारत की इस मेडल टैली में।
2: शक्ति, सेमीफाइनल से पहले सब जगह खबर चल रही थी कि 10 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित कर लिए हैं इसमें, लेकिन खास बात ये रही कि 10 के 10 ने फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से

0: सात गोल्ड और तीन सिल्वर हमें प्राप्त हुए। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, प्रिया घांगस, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल जैसे खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो लवलीना बोरगोहेन और जादूमणि सिंह नरेंद्र, इन तीनों ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया। तो जो एक बात होती है सेमीफाइनल से पहले कि ब्रॉन्ज तो पक्का ही हो गया, ऐसा ना करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने भारत को गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी झोली में डाला।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक पे दाव लगाया और हर मुक्का जो है भारत के लिए एक बेहतर पदक और एक बेहतर उम्मीद लेकर के आया। और अब बात की जाए भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का पैरा इवेंट्स में अभियान 7 पदक के साथ संपन्न हुआ। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रस्तुत है भारतीय पैरा टीम के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।
2: पैरा इवेंट्स में भारत के लिए पदकों की शुरुआत झंडू कुमार ने कांस्य पदक के साथ की। भारोत्तोलक झंडू कुमार ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के भारत के लिए ग्लासगो में पहला पदक जीता। रजत पदक के लिए हुए कड़े मुकाबले में वो सिर्फ 0.1 से पीछे रहे। एथलेटिक्स में महिलाओं की शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक और शिल्पा कंचुगर को पालू शायला ने 7.26 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 100 मीटर T47 दौड़ में दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में भी भारत ने डबल पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पहला स्थान और शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: सिर्फ खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं जीते, जब हम डबल पोडियम की बात करते हैं तो बताता है कि आपके उस इवेंट में किस प्रकार का दबदबा है जब शीर्ष 3 में से 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आपके देश के होते हैं और बहुत गौरवमय उपस्थिति होती है। भारत ने इस बार 2 से 3 कैटेगरी में ऐसे डबल पोडियम फिनिश किए और खासकर वो 100 मीटर की दौड़ जिसमें भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों अपनी झोली में डाला। और अब एथलेटिक्स की बात कर ही ली है तो बात की जाए इस पूरे खेल आयोजन में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाले भारत के लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुरवीर सिंह की, जिन्होंने कल एक और पदक भारत के खाते में जोड़ा। गुरवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए इतिहास रचा। उन्होंने 13:24.95 सेकंड का समय लेते हुए ये दौड़ पूरी की। गुरवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं।
3: But the man who steps up to the podium right now is a history maker. He did so in the 10,000 meters and he's done so in the 5,000 meters as well. The first ever medalist from India in this discipline, Gulveer Singh.
1: पहले 10,000 मीटर और फिर 5,000 मीटर विशेष, कितना ये खास खिलाड़ी है भारत के लिए?
0: ये गुलवीर जो हैं भारत के लिए बहुत ही खास खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पदक दिलाया है जो कि परंपरागत तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए सही नहीं माना जाता है या उसके लिए उनकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं मानी जाती। ये उनको ये पदक भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एक ही कॉमनवेल्थ इवेंट में जो है दो मेडल जीते हैं और ये डबल पोडियम फिनिश करने वाले भी पहले भारतीय बने हैं। गुलवीर ने ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं कीनिया और युगांडा, उनके खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ये मेडल अपने नाम किए हैं।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि इसके पहले जब उन्होंने 10,000 मीटर में रजत पदक जीता था तो भी काफ़ी चर्चाएं उनकी हुई थी। एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप 24 से 25 चक्कर लगाते हैं उस 400 मीटर के ट्रैक के, जो आपके स्टैमिना के साथ, आपके पेशेंस के साथ, आपके मनोवैज्ञानिक ध्यान की भी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है। आपको लगातार चक्कर लगाने हैं, आखिरी समय तक अपनी स्पीड को बचा के रखना है और फिर आखिरी के 100, 150, 200 मीटर में, जो कल भी देखने को मिला और 10,000 मीटर की दौड़ में भी था, एक शानदार स्प्रिंट आती और भारत को पोडियम तक ले करके जाती है। और भारत की अगर पदक तालिका की बात की जाए तो 39 पदक हो चुके हैं, चौथे स्थान पर भारत है, 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। चेरी ऑन द केक भारत के लिए इस आयोजन में रहा है जूडो, जिससे 2 स्वर्ण आए, 1 रजत आया, 1 कांस्य पदक आया। महत्वाकांक्षा शायद नहीं थी, लेकिन भारतीय जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे देखा जा सकता है विशेष?
0: देखिए, जूडो की बात करें शक्ति, तो यह जो इवेंट रहा है इसमें भारत को पहला गोल्ड हासिल हुआ है।

0: 1990 में यह कॉमनवेल्थ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था जूडो को, और उसके बाद से भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हमें देखने को मिला है। अस्मिता डे जो है वो पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता, वहीं हर्ष सिंह 60 किलोग्राम में पहले ऐसे पुरुष बने जिन्होंने मतलब भारत के लिए गोल्ड जीता। यामिनी मौर्या और उन्नति शर्मा ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर भारत के मान को बढ़ाया है।
1: जी बिल्कुल, और मान को बढ़ाया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन तमाम पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

0: बिल्कुल, और मान को बढ़ाया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन तमाम पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात की जाए बैडमिंटन कोर्ट की, जहां एक इतिहास आज रचा है 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने, जिन्होंने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता। 17 वर्षीय तन्वी ने इस खिताब को जीतने वाली किसी भी कैटेगरी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। ये उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल है।
1: तन्वी शर्मा एंड शी बिकम्स जस्ट द फोर्थ इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ सुपर 300।
2: तन्वी शर्मा ने आज महिला सिंगल्स फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त गुएन थुई लिन को 21-16, 21-16 से हराकर ताइपे ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। वह साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं। साइना ने 2008 में यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही तन्वी ने इस टूर्नामेंट में भारत का 17 साल का खिताबी सूखा भी समाप्त किया। 2009 में टूर्नामेंट के ग्राम प्री गोल्ड दौर में ज्वाला गुट्टा और वी दिजू की मिक्स डबल जोड़ी की जीत के बाद यह देश की तीसरी जीत है। तन्वी ने पूरे फाइनल में दबदबा बनाए रखा और बेहद संतुलित खेल दिखाते हुए सिर्फ 36 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वह सुपर 300 या उससे ऊंचे स्तर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला सिंगल शटलर बन गई हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात की जाए संडे ऑन साइकिल की, संडे के फिटनेस डोज की। भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में NCC साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से उपस्थित थी। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आज़ादी की 79 वर्ष के जश्न के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 79 NCC कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। और NCC, उन्होंने कहा कि फिटनेस अनुशासन और समाज में सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं
0: जी। और इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात का ध्यान रखना चाहिए।
4: मुझे बहुत अच्छा लगा आज रोकी में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
0: संडे ऑन साइकिल का भी 84वां संस्करण आज ही शुरू किया गया, नशा मुक्ति की थीम पर विशेष। क्या संदेश है साइकिल ऑन संडे?
5: शक्ति, अगर बात करें संडे ऑन साइकिल के संदेशों की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर, उसके बाद प्रदूषण से मुक्ति और ईंधन की बचत के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम संडे ऑन साइकिल के इस इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है, जहां हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं इस प्रतियोगिता।
0: जी बिल्कुल, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्या युवा क्या बुजुर्ग, और जो जोश देखने को मिलता है सुबह सुबह शहरों की सड़कों पर, लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिटनेस का संदेश देते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि सिर्फ फिटनेस नहीं, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी है ये साइकिल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के

0: राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार

0: पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम

0: हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation.

0: इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
2: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, अध्यक्ष, नेताजी रिसर्च ब्यूरो।
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राजबिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और तरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था।

आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना, वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया।

ये सिंपल एक कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको तीन टुकड़ों में

0: उस जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन एच बी बराल, हिम महादेव बराल को दिया गया, और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
1: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
0: दिस इज फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। कदम कदम बढ़ाए, दिस इज मेलोडी। पहले जो था इंट्रोडक्शन था, नो मेलोडी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। दिस इज मेलोडी। नाउ इज अ ब्रास बीटी, ला ला ला ला ला ला ला ला, पम पम पम पम पम पम पम पम पम, टम टरम टरम टम पम पम पम डरम। दिस इज द ब्रास ड्यूटी, दिस एक्चुअल, दिस इज द जोश, दिस इज द जोश जवान के हृदय में लाने के लिए, दिमाग में लाने के। देन अगेन इज अ मेलोडी, दिस इज ऑल्सो मेलोडी। नाउ इज अ ट्रियो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है, वो सब कुछ इस गीत में है।

0: मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है, बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ एक जज्बे के साथ कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945 एंड देयर वाज अ ह्यूज

0: popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective, because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shahnawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
1: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
2: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हस्सर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मैस में जाते थे तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: काम लिया। जय हिंद भाइयों, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab avhan pracharit shuni tab udar bani Hindu Bodh Shikh Jaina Parashik Musalman Krishtani Purab

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत

0: के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से

0: गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibaddh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahe roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

Mara mara gama gara.

रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल है बर्निन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस।

और श्री सुधाकर देवली जी इन राग बसंती केदार. श्री सुधाकर देवली इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम.

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bhartiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.
2: अभी आप सुन रहे थे रविवारी संगीत सभा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24

0: प्रतिशत से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners.